0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: So,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: This one's dedicated to my boy B. Brian,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: पिंडा विचो पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: represent, sin. Snoop Dogg,
1: yeah.
0: Represent it to your doggy style. Come on, come on. Yeah, yeah. DJ Barry, you sound the bass.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: पिंडा विचो पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रातें उदास हैं, इस गम की जिंदगी में मुझे तेरी आस है। हर वक्त तड़पता रहता हूँ, फरियाद करता हूँ, इस वक्त चले आओ मैं तुमको याद करता हूँ।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ਬੇਸ਼ੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀਆਂ।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

अम्मा बात, ये सफर का महीना है और इस महीने की मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आज की इस मजलिस में आपके सामने पेश करूंगा। सफर का ये इस्लामी जो कैलेंडर जो अल्लाह ताला ने बनाया है इस जमीन के लिए, जब अल्लाह पाक ने इस आसमान और जमीन को पैदा किया तो इसका निज़ाम चलाने के लिए इसका कैलेंडर अल्लाह ताला बनाया 12 महीनों पर, और वह 12 महीने उनके नाम और सब अल्लाह पाक ने ही तजवीज़ किए हैं। तो इन 12 महीनों में से ये अब दूसरा महीना है सफ़र का, मुहर्रम का पहला महीना है और दूसरा महीना सफ़र का है ये। और ये सफ़र का महीना अरबों में, ये महीना इससे मशहूर था कि लोग इससे एक मनहूस समझते थे और इस महीने के आमद से ही लोग जो है वो समझते थे कि ये एक परेशानियों का महीना है, और जिससे तशाउम कहते हैं कि इसे बदफाली लिया करते थे, कि इसी वजह से जब ये सफ़र का महीना आता था तो लोग सफ़र के महीने में जो है सफ़र वारा करने से रुक जाते थे, और सफ़र के महीने में और भी अपने बहुत सारे ज़िंदगी काम छोड़ दिया करते थे कि ये महीना ये अच्छा महीना नहीं है और ये एक मनहूस महीना है। इसकी वजह क्या थी असल में कि अरबों में जो है कि अक्सर वो रहता था अपने जो है जंग व जदल जारी रहता था, काफिले जाया करते थे, लूट जाया करते थे, तो हर वक्त एक बदामनी का एक माहौल होता था ये। और लेकिन ये सारी जो है बदामनी में सिर्फ जो है 4 महीने जो अल्लाह पाक ने हुरमत के मुकर्रर किए हुए हैं वो उस 4 महीने में अमन होता था। तो अरब जो है वो बावजूद इसके कि वो जो है आपस में उनकी दुश्मनी थी, जंग व जिदाल था, काफी लूटा करते थे, लेकिन जैसे ये मुहर्रम के 4 महीने आते थे, अशर हुरम जो कहते हैं, तो फिर इस महीने में वो कत्ल कितार रुक जाया करता था, रास्ते पूर अमन हो जाया करते थे। उसकी वजह भी ये थी कि लोगों के दिलों में उस वक्त से अल्लाह ताला के घर का एहतराम था और लोग हज करने के लिए आया करते थे अपने तरीके से। तो इसी महीने में चूंकि ज़िलहज्जा का महीना होता था और इस ज़िलहज्जा और फिर में लोग हज करने आते थे, और फिर यह है कि मुहर्रम के महीने लोग वापस जाया करते थे, तो अल्लाह ताला के घर के एहतराम की वजह से, अल्लाह के घर के एहतराम की वजह से जो है इन महीनों के अंदर जब लोग आ रहे हैं और फिर हज करके फिर वापस जा रहे हैं, तो इस एहतराम की वजह से फिर लोग जो है वो जंग व जिदाल से या लूट मार से वो रुक जाया करते थे कि नहीं, इन महीनों के अंदर जो है जो लोग अल्लाह ताला के घर आते हैं तो अल्लाह के मेहमान होते हैं, और तो गोया कि अल्लाह के घर के एहतराम की वजह से वो रुक जाया करते थे। और लेकिन जैसे ही सफर का महीना शुरू होता तो सफर के महीने में उमून यही होता था कि मुहर्रम के एंड तक काफले अपने अपने जगहों में लौट के चले गए, तो सफर से अब गोया कि उनका जिंदगी का एक नया जो एक मामूल चला आ रहा था कि आपस के जो है जंगें, आपस की मुखालफतें और रास्ते जो है वो जो लूट मार होती थी, काफले लूट जाया करते थे, वो ये दोबारा ये जो है हालत आ जाया करती थी। तो इस वजह से जो है सफर के दखूल से ही आने से ही लोग समझते थे कि भाई ये एक मनहूस महीना आ गया, दोबारा फिर जंगें शुरू हो जाएंगी और दोबारा काफले लुटने शुरू हो जाएंगी, अब पता नहीं कि जो है वो किस किस का जो है खून बहाया जाएगा, काफले लुटेगा, तो गया कि एक बदामनी का एक माहौल दोबारा आ जाया करता था। तो जिसकी वजह से लोग इस महीने को एक मनहूस और नहस महीना समझा करते थे। तो इसी वजह से जो है ये कि सफर का महीना आ गया है, सफर के महीने की वजह से जो है एक नहूसत जो समझते हैं कि आ गई है, तो इसको मनहूस समझते थे।
تو یہ زمانہ جاہلیت

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ چند لمحے پہلے آپ بات سن رہے تھے ماسٹر یعقوب صاحب کی، جو کہ اسکینڈینیویا کے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر محترم مجیب الرحمان قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، ہم آپ کو آداب کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔
1: قریشی صاحب، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح، کیا کرونا کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟
2: دیکھیں جی، کرونا کی سچویشن جو ہے وہ ڈنمارک میں کافی بہتر ہے، اور بہتر سے مراد یہ ہے کہ جو اگر 2 مہینے پہلے ہم اس کو لے لیں تو اس سے کافی اچھی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ ویکسین وغیرہ لگوا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، تمام لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے۔ اور سٹل جیسا کہ ابھی ماسک اتر گئے ہیں اور چیزیں اتر گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو تھوڑی سی ایس او پیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے پھر بھی ملنے جلنے، فاصلہ اس کو تھوڑا سا برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی جو لیٹسٹ یہاں کی رپورٹ ہے ڈنمارک کی، کہ وہ 40% سے تو زیادہ میرا خیال ہے ایک انجیکشن سب کو لگ چکا ہے، ایک ویکسین، اور باقی بھی کوششیں جاری ہیں کہ جلدی سے جلدی جو دوسری ویکسین جو 3-4 ہفتے کے بعد لگتی ہے وہ بھی لوگوں کو لگ رہی ہے۔ شکر الحمدللہ میری دونوں مکمل ہو چکی ہیں۔
1: بڑی اچھی بات ہے جی، سب کو دوائی جو ہے لگوانی چاہیے۔ اتنی سہولت ہے، جہاں اتنی سہولت ہے، جہاں اتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجیب صاحب، آتے ہیں، چونکہ آپ جمہوری آدمی ہیں، پہلے ذرا پاکستان کی بات کر لیں۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ وہ کیا نام ہے، جو پارلیمنٹ کی کتابیں ہوتی ہیں، جو آئین یا کہہ سکتے ہیں جو بھی ایجنڈا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو بچوں کا کھیل تھا ایک دوسرے پر، یہ جہاز جو گرائے گئے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟
2: سب سے تو پہلے تو میں جی اس تمام جو بھی وہاں پہ وہ یہ سامنے مناظر آئے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کم از کم تعلیم تو بی اے کی رکھی ہوئی ہے ہم نے، ہم پڑھے لکھے لوگ اسمبلیز میں جاتے ہیں، اور جہاں پہ وہ اسمبلیز میں جو انہوں نے اکھاڑا بنایا، میں جو اس میں شامل تھے، میں ان کی سب کی مذمت کرتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے سیشن کو چلانا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ اسپیکر کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نالائق اسپیکر اس حکومت کو ملا ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس کے پاس بہت سارے جو ہیں اختیارات ہوتے ہیں۔ میں اگر اس کی جگہ اسپیکر ہوتا تو جنہوں نے یہ الڑ بازی کی، کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا، میں ان کو 6 مہینے کے لیے بین کرتا، ان کی تمام مراد واپس لیتا، ان کو 6 مہینے تنخواہ نہ دیتا، اور 6 مہینے کے بعد شرط کے ساتھ ان کو اسمبلی کے اندر داخل ہونے دیتا۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے 7 بندوں کو بین کیا، دوسرے دن آپ نے ان کو اندر لے کے آئے، وفاقی وزراء ٹیبلوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، وہ میں دیکھو میرے جیسا کمزور آدمی پرویز خٹک وہ بھی جہاز چلا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ لوگ کیا، انہوں نے اسمبلی کو کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں اگر اسپیکر ہوتا، میں آپ کو راہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو بین کرتا، اور لمبے ٹائم کے لیے بین کرتا، اور اس کے بعد دوبارہ میں کہتا کہ اگر دوبارہ اسمبلی میں ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی، اگر کوئی لڑائی جھگڑا کسی نے کیا، ہاں آپ ایک اچھے طریقے سے اگر آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اپنے اچھے الفاظوں کے ساتھ، وہ آپ کا رائٹس ہے، اپوزیشن کا بھی رائٹس ہے، حکومت کا بھی رائٹس ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے اکھاڑا بننا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چور، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو مارنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی بالکل جو ہے نا، آپ یہ سمجھے کہ دیکھنے والے، اور کیا ہماری نتیجے جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو یہ کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہماری اسمبلی یہ کیا، یعنی کہ راستہ بنا رہے ہیں نا، پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر آ کے کیوں قابض ہو جاتی ہے، یہ راستہ بناتے ہیں نا، یہ اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ بھئی آپ نے تحمل سے بات سننی ہے، آپ نے تحمل سے جواب دینا ہے۔ اور یہی دیکھیں ہم ڈنمارک میں رہ کے، ہم ہمیشہ آپ کو بتایا کہ میری ذاتی یہ خواہش رہی ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، جس جس جماعت کا جس جس چیز سے تعلق ہو، اپنا وژن ضرور بیان کرے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے اچھے الفاظوں کا جو ہے چناؤ لے کے اگر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ایسا موقع نہیں آتا۔ لیکن میں تو حیران ہوں کہ وہ ابھی قومی اسمبلی کا کام ختم نہیں ہوا، آپ نے دیکھا بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا، بکتر بند گاڑی کے ذریعے دروازہ کھولا گیا, یہ تو اگر ملک کی حالت ہوگی تو اس ملک میں کیا ترقی ہوگی, اس ملک کی عوام کیا سوچیں. یہ تو سیدھی سیدھی آپس میں آپ خانہ جنگی کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, دشمن آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ انڈیا ہر وقت آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. آپ کو اپنے ملک کے اندر کم از کم اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے ضرور بات کریں, تنقید ضرور کریں, لیکن پازیٹو کریں, ایک اچھے طریقے سے کریں. لیکن جو کچھ وہ یہ تین چار دن وہاں پہ ہوا, آخر پھر کیا ہوا رہا صاحب, دیکھیں نا, پھر جب وہ اوپر سے ٹیلی فون آتے ہیں نا کہ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھنا تو پھر ہم آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں. تو پھر چوتھے دن آرام سے بیٹھ گئے نا, تو یہ پہلے دن بھی آرام سے بیٹھ سکتے تھے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آئے جس سے کہ
1: مجیب صاحب آپ سپیکر کی بات کر رہے ہیں کہ سپیکر صاحب کو یہ کرنا چاہیے, اور واقعی انہیں یہ کرنا چاہیے تاکہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ فکس ہو جائے, سیٹ ہو جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹی لیڈران ہیں انہوں نے اپنے ممبروں کے ساتھ کیا کیا ہے.
2: دیکھیں جی, میں تو پوری اسمبلی کو کہہ رہا ہوں نا, میں کسی کو نہیں اس وقت کہہ رہا, میں پوری اسمبلی کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں جن لوگوں نے وہاں پہ یہ کام کیا, ان کے لیڈران کو چاہیے تھا, جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو کہتے بھائی آپ اپنی تنقید ضرور کریں, لیکن آپ اپنی تنقید کا جو چناؤ ہے اس میں گالیاں, اس میں ایسی بدتمیزی, اس میں یہ آپ ایجنڈے پھینکنا, کتابیں مارنا, وہ پانچ چھ چار پانچ کلو کی کتاب ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کہ مطلب کہ وہ کدھر کدھر جا رہی ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ وفاقی وزیر ڈیسک پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور وہ جو دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح مل کے وہ کر رہے ہیں. ادھر سے اپوزیشن والے ہیں, وہ اگر وہ بھی بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے ہیں, حکومت والے وہ بڑھ چڑھ کے, بھائی وہ کیا کھڑا بنا ہوا قومی اسمبلی ہے, ہم ہمارے پیسوں سے وہ چلتی ہے, ایک ایک سیشن کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں اگر ہوتا اسپیکر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان سب بندوں کو جو ڈیسک کے اوپر چڑھے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے ہوں, حکومت کی طرف سے ہوں, ان کو بین کرتا. بلکہ میرا تو یہ اختیار ہوتا تو میں ان کو معطل کر دیتا, اگلے الیکشن میں ان کو باہر بٹھاتا تاکہ ان کو سبق ملتا کہ یہ. لیکن کیا ہوا, اگلے دن وہ پھر اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں, لیکن ہمارا اسپیکر بیچارہ کیا کرے, اگلے دن آ کے وہ اعلان کرتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہیں.
1: جی صاحب دیکھیں نا, چلیں یہ تو باتیں چلتی رہیں گی, چونکہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے وہ جو اس طرف جو ہے سٹرگل ہو رہی ہے, تو یہ سب نے مل جل کر اگر یہی کچھ کرنا ہے, میں نہیں چاہتا پی ٹی آئی کا قصور ہے, حکومتی جماعت کا قصور ہے, اپوزیشن کا قصور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لیڈران ہیں وہ جب شاباشی دیتے ہیں کہ تم نے واقعی بہت اچھی گندی اور بہت غلیظ گالی جو نکالی ہے, تمہارے نمبر بہت زیادہ ہیں, کوئی بندہ جو ہے پبلک میں جا کر کہتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے, تو کہیں سے لیڈرشپ بولتی نہیں ہے, ان کے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ تائید کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, فلاں نے زیادہ نکال لی ہیں, فلاں نے کم نکال لی ہیں. پھر ایک سوشل میڈیا ہے, آپ ان کو روک نہیں سکتے, خود پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا موبائل سے فلمیں بنا رہے ہیں اور اس کے بعد دے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں. تو نہ ممبر کی ذمہ داری اپنی وہ لینے کے لیے تیار ہے, نہ اسپیکر لینے کے لیے تیار ہے, نہ پارٹی لیڈر لینے کے لیے تیار ہے, نہ وزیر اعظم پاکستان لینے کے لیے تیار ہے, تو پھر ہوگا کیا؟
2: دیکھیں نا راج صاحب, آپ کے دیکھیں نا, آپ نے جتنی باتیں کی میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں, اپنے لیڈر, وہ آپ کی بات درست ہے, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, ان کو جب آپ نے اسمبلی میں بھیجنا ہے, اور دیکھیں یہ ایک سیشن جو ہے یہ ایک بڑا عام سیشن ہوتا ہے, یہ اس سے آپ کے ملک جو ہے اس کا پورے سال کا بجٹ آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے بجٹ پہ دیکھے نا. اگر میں کہتا ہوں ایز اے اپوزیشن, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے, اس میں یہ خرابیاں ہیں, میں اس کی نشاندہی کروں. ہاں جی, آپ نے جو ہے سرکاری ملازمین تنخواہ بہت کم بڑھائی ہے, آپ نے ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے, آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, آپ نے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اگر آپ کے پاس اتنی گندم آئی تھی, چینی آئی تھی, آپ کو چینی آٹا سستا کرنا, عوام کو یہ جی ڈی پی اور یہ بار جو ہے نا ہنسے, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے کتنی گروتھ ہوگی, اتنی گروتھ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ ان کی جو نارمل زندگی میں کیا ہے, نارمل زندگی میں آپ کا کھانا پینا ہے, آپ کی بجلی گیس ہے, آپ کا نارمل چیزیں یہ ہوتی ہیں. دیکھیں اگر گاڑیاں سستی ہو جاتی ہیں تو گاڑی ہو سکتا ہے میں بھی جا کے نہ لے سکوں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ جو 20,000 روپے جس کی انہوں نے کم از کم آمدنی رکھی ہے, وہ کیا وہ گاڑی لے گا جا کے 5-10 لاکھ روپے کی؟ اس کو روٹی چاہیے. اگر آپ آٹا سستا کر دیں, چینی سستا کر دیں, کھانے پینے کی چیزیں سستا کر دیں, بجلی سستی کر دیں, گیس سستی کر دیں, لوگوں کی تنخواہ کم از کم 20-25% بڑھا دیں تاکہ وہ مہنگائی کا مقابلہ, یہ ہوتے ہیں بجٹ. اب بجٹ کیا, یہ آپ نے اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں, یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں, ٹھیک ہے جی یہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہیں, یہ چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ حکومت کہتی ہے دیکھیں جی ہم نے کسانوں کو اتنا دے دیا, हमने देखें जी गंदा मचीनी पे जितना हमने ये बोझ जी हमारी फसल हुई, हमें खुशी है अल्लाह करे इससे डबल फसल हो, लेकिन उसको अवाम तक जो फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर वो बात आ जाती है जिस पे लड़ाइयां होती हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कुछ हैं, जिनको एनआरओ देना होता है दे दिया। चीनी के ऊपर तो जंगीर तरीन को एफआईए ने कह दिया जी हम आपको एक हफ्ता पहले बताएंगे अगर आपको हमने बुलाना हुआ तो, आपका तो इस चीज का तलक ही नहीं है। क्या हुआ? ऐसी चीजें नहीं होती, चीजें वो होती हैं बजट के ऊपर। मैं समझता हूँ कि कौमी असेंबली में हुकूमती जमात को ज्यादा सब्र करना पड़ता है क्योंकि वो हुकूमत में होते हैं, और अपोजिशन को भी सब्र करना चाहिए क्योंकि अपोजिशन भी मुंतखब होकर आई है और उसने भी अवाम के मसाइल हल करने हैं। ये अवाम के जो लोकली मसाइल हैं कल उन्होंने हल्के में जाना है, चाहे कोई हुकूमती है चाहे कोई अपोजिशन वाला है, तो उनको वो असेंबली में जाके अगर वो कोई गाली देगा तो कल मैं सुन रहा था जो बहुत ज्यादा वहां पर गालियां दे रहा था उसकी अम्मी ने उसको घर से निकाल दिया, तो सारे कह रहे थे अच्छा कि अम्मी ने घर से निकाल दिया। मैं क्या, मैं अगर मैं उसकी पार्टी का अगर होता ना सदर या उसका चेयरमैन तो मैं उसको पार्टी से भी निकाल देता, उसको बैन करता मैं कि तुम्हें ये हक नहीं पहुंचता, अगर तुम्हें किसी ने गाली दे दी तुम ही सबर कर दो। कोई भी बंदा है, मैं तो कहता हूँ हुकूमती है या अपोजिशन है, गाली देना बहुत बुरी बात है, और दोनों को दोनों टीमों को बैन हुआ होता 6 महीने साल के लिए ताकि नसीहत बनती। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जिनके टेलीफोन आके ये खामोशी हो जाती है ना उनके पास पावर है और उन्होंने उनको खामोश करो करवा के दिखा दिया है कि खामोश नहीं होना तो फिर अगले दिन तैयार हो जाओ, सबके जो है ना चट्टे पट्टे हमारे पास हैं, फाइलें हमारे पास हैं, सब तैयार हो जाए, क्योंकि सबको पता है आटे में क्या है, चीनी में क्या है, रिंग रोड में क्या है, जाली अकाउंटों में क्या है, शुगर मिलों में क्या है, सब कुछ उनके पास है। तो ये चीजें जो है ना इन सियासी जो लोग हैं या पार्लियामेंट
1: मजीद साहब, इसका मतलब है कि उनको अपनी औकात का पता है,
2: बिल्कुल पता है उनको। राज साहब देखें आपको माशाल्लाह अरसा हो गया, आप सियासी घराने से भी तल्लक रखते हैं और आपके पास मीडिया भी है, और हम मेरे जैसा एक कारकुन जो 40 साल से ज्यादा इस चीजों में शामिल है और इस चीजों का तजिया करते रहता है, हर बंदे को पता है कि मेरी औकात क्या है। लेकिन अगर अपनी औकात को उस चीज तरीके से जाहिर करें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अच्छे तरीके से आवाम के मसाइल लेकर आवाम की बात करें, ये क्या हुआ कि पर्सनली 4 बंदों को आप पकड़ लेते हैं, अवाम की बात उधर ही रह जाती है, सेशन खत्म हो जाता है। 2 दिन आपको पता है सेशन के ऊपर कितना खर्चा होता है, आपको सबको पता है। और मुझे नहीं समझ आई कि वो स्पीकर साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता सैनिटाइजर किसने फेंका है, बाबा उसके अंदर कौमी असेंबली के अंदर ना बेशुमार कैमरा लगा हुआ है, आप 1 मिनट के अंदर आप उस चीज को निकाल सकते हो, और वो कैमरे में लोग नजर नहीं आए जो डेस्क के ऊपर चढ़े हुए थे, सब कुछ नजर आता है। लेकिन जब स्पीकर ये कह देना कि मैं बेबस हूं, तो अगर मैं भी स्पीकर हूं तो मेरा ख्याल है मैं जगह खाली कर दूं, और जो जिसके पास ये चीजें ताकत हो कानून चलाने का पता हो उसको हम स्पीकर बना दें। लेकिन यही चीजें जो है ना मुल्क को मुल्क की नाकामी के लिए होती, मुल्क की और साथ साथ आवाम की नाकामी के लिए होती है कि मुल्क के अंदर अगर आप एक अदारा जो है पार्लियामेंट जो एक सुप्रीम अदारा है अगर वो एक एक जगह पे इकट्ठा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आवाम बेचारी तो पिसी हुई होती है, पिसी हुई है और पिसी हुई रहेगी।
1: मुजीब साहब आपने आवाम का जिक्र किया, तो अब चूंकि हम लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज हैं, हम कोपेनहेगन में रहते हैं, हमें भी जो अपनी आवाम का ख्याल बहुत ज्यादा है। ये जो PIA जो है इंग्लैंड से तो चार्टर्ड फ्लाइटें चल पड़ती हैं और पता नहीं डेनमार्क में क्या हो जाता है, हालांकि जितनी ज़्यादा तंजीमात हैं, जितनी सियासी लोग एक्टिव हैं, जितने कम्यून में एक्टिव हैं, पार्लियामेंट की बात होती रहती है, जितना मीडिया इतना एक्टिव रोल अदा करता है डेनमार्क का, जितना भी मीडिया है, उसके बावजूद जो है कोई मसले मसाइल हल नहीं होते, उलझते जाते हैं। PIA का तो यहाँ नामो निशान नहीं है, अब तो पता चलता है कि PIA को जैसे मकान गिरा के वहाँ जो है कोई नया प्लाजा खड़ा कर दिया जाता है, तो अब PIA का तो ये हाल हो गया डेनमार्क में।
2: आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, देखने PIA क्योंकि हमारी कौमी एयरलाइन थी, और अभी थोड़ी देर पहले साहब जो है वो जिक्र कर रहे थे कि आपको पता है सफर के मामले में हमारे बुजुर्गों को हमारी ख्वातीन को प्रॉब्लम होती है, चला तो जाता है पाकिस्तान अगर दुबई के रास्ते जाना हो या दोहा के रास्ते जाना हो या इस्तांबुल के रास्ते जाना हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं सीधे उतरें अपने मुल्क में उतरें, अगर आसानी पैदा हो। लेकिन उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि 3 साल से अभी 1.5 साल से हो गया है, 1.5 साल में जो खान सरवर साहब ने जो कुछ किया है उसका रिजल्ट तो आप सब ने देख लिया है, और उसके ऊपर फिर हम कहते हैं जी हम खसारे में जा रहे हैं, हम इसमें जा रहे हैं, पूरे यूरोप से बिजनेस बंद हो गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे दोस्त PTI के जो माशाल्लाह कितनी दफा मुंतखब भी हुए हैं और वो पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं, पार्टी के लिए एक्टिव वो काम करते हैं, वजीरों से मिलते हैं, वजीर आजम तक रसाई है, हर चीज है, तो वो कह रहे थे जी हम जब इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर हम देखेंगे, एम्बेसी से बात करेंगे। PIA की भाई आप लोगों की हुकूमत है, आप लोग यहाँ पर आप लोग वहां के यहाँ का उनका असासा है पीटीआई का, आप लोग जो है वो बढ़ चढ़ के बगैर किसी, आपके पास कोई जरूरी नहीं कि आप सदर जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट या कुछ आपके पास पोस्ट हो तो आपने काम करना है, आप क्योंकि पीटीआई है तो आपकी हुकूमत है, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा आपको जो है ना आगे निकल के कदम उठाना चाहिए। हम तो ओपनली कहते हैं हम जो भी अच्छा काम पीटीआई यहाँ से लेके चलेगी कम्युनिटी के लिए, डेनमार्क की कम्युनिटी के लिए, हम उनका साथ देंगे, इसलिए कि हमने कम्युनिटी के लिए काम करना है। बाकी यहाँ पे जितनी भी जमातें हैं, सोसाइटीज हैं, मजहबी जमातें हैं, अपना सियासी जमातें हैं, वो सब हम लोग एक ही हैं। देखें, अगर मैं पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम करता हूँ, अगर मैं कोई लोगों को इन्वाइट करूंगा वही लोग आएंगे जो कि अगर नून वाले करते हैं तो नून में चले जाएंगे, अगर पीटीआई वाले करते हैं पीटीआई वाले करते चले जाएंगे, सोसाइटी को करती है उधर चल जाएंगे, कोई मस्जिद में प्रोग्राम हो वही लोग हैं, हम वही लोग हैं जो कि इधर से उधर इधर से उधर। इसलिए हमें आपस में यहाँ पे बैठ के ये चीज तय करनी चाहिए, जो भी कम्युनिटी के लिए काम करना है उसके ऊपर सबने मुत्तफिक होके, पीटीआई अगर इस काम के लिए पीए के लिए आगे होती है तो हम, मैं आपको कह रहा हूँ आप कम्युनिटी फोरमैन कम्युनिटी के फोरमैन है, आप देखें आप जितनी भी ये कम्युनिटी फॉर्म के लिए हमने काम किया, आपको पता है मिलके किया हमने, अगर आप मिलके ना करते तो हो सकता है मैं आप ये नहीं काम कर सकते थे। हमने सब ने, हम आज भी कहते हैं, हम मैं आनेर कह रहा हूँ कि मैं पीटीआई वालों को अपने दोस्तों को दावत देता हूँ कि उनके पास अभी जो मैं सुनता हूँ हर हफ्ते वाले दिन के जी हमारा इनसे रब्ता हुआ, हमारा इनसे रब्ता हुआ, हमारा इनसे रब्ता हुआ, तो क्या इस टॉपिक पे बगैर इलेक्शन लड़े वो इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते कि पीआईए यहाँ पे बहाल की जाए, क्यों नहीं बात करते कि ये कि वैसे हमें प्रॉब्लम है, यही कह लें कि हफ्ते में एक ही फ्लाइट ले लें नॉर्वे डेनमार्क के लिए।
1: नहीं मुजीब साहब, वो बात जरूर करते हैं, सेनेटर फैसल साहब से जरूर बात करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं।
2: नहीं ये तो मुझे पता है कि खैर ये उनका इंटरनली मामला है, मैं इसके हम तो बार बार कह चुके हैं,
1: जिक्र चल पड़ा है जब पीटीआई का, यहाँ की पीटीआई का चल पड़ा है, तो अभी आपके कुलीग जो हैं वो, चूंकि आप कुलीग हैं अपोजिशन में इकट्ठे बैठते हैं, मास्टर यकूब साहब कह रहे थे कि मुझसे वोट मांगने आए हैं, मेरे बच्चों से मांगने आए हैं, मेरा कार्ड, मेरा सुसिकनी कार्ड, बैंक की इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारी चीजें। जी साहब मुझे बड़ा अजीब लगा, आपकी क्या पोजीशन है?
2: मैं तो सबसे पहले राजा फराज साहब की बात पे मुतमईन हूँ कि जो उन्होंने आपको विमर्शित का बताया, मेरा ख्याल है फिर अभी भी उन्होंने कुछ ज्यादा ही बता दिया है। देखें हम अरसद राज से यहाँ पे पार्टियों में काम कर रहे हैं, जेन्युइन जो बंदे हैं ना, जैसे मास्टर साहब ने जिक्र किया, वो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो तो सबसे पहले अपने आप को तब्दील नहीं करते, और वो जो लोग होते हैं उनकी तादाद हजारों में नहीं होती, ठीक है। वो जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, नून वाले हैं, या पीटीआई वाले हैं, या कोई हैं, वो जो लोग हैं वो लोग अपनी अपनी पार्टियों में मौजूद हैं। जैसे मास्टर साहब ने जिक्र किया, मैं मास्टर साहब की बात की तायद करूंगा कि वो मुझे भी अभी 4-5 दिन से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी वाले के लोगों के घरों में भी जा रहे हैं और उनसे वो कार्ड मांग रहे हैं, और बार बार वो लोग कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई तलक नहीं है क्योंकि हम जो है ना पीपल्स पार्टी के लोग हैं, और आप क्योंकि पीटीआई का ये लोकल इलेक्शन है, पीटीआई के जो मेरे अंदाजे में पीटीआई के 50-100 बंदे जेन्युइन यहाँ पे डेनमार्क में होंगे, मेरे अंदाजे में, मैं देखें मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, बाकी जितने लोग इर्द गिर्द से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वो पीटीआई के जेन्युइन मेंबर नहीं है, वो पीटीआई के लोग नहीं है, वो तल्लुकात के ऊपर है कि मेरे साथ जिसके तल्लुकात है मैं उसकी सपोर्ट करूंगा, आपके जिसके साथ तल्लुकात है, और ऐसा ही हो रहा है। हम कोई यहाँ पे या कोई ये नहीं, हमने उम्र गुजारी है यहाँ पे, हमने इलेक्शन लड़े हैं, हमें पता है यहाँ पे वही लोग जो जेन्युइन होते हैं वो बहुत उनकी तादाद कम होती है, ये क्योंकि हम एक दूसरे का अना का मसला बना लेते हैं, इस ग्रुप की मैंने सपोर्ट करनी है, इस ग्रुप की मैंने सपोर्ट करनी है। आपको याद होगा कि जितने भी ये आपके संडे वाले दिन लाइव प्रोग्राम ने, हमने ऐलान किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ग्रुप के साथ इस मामले में साथ नहीं देगी कि हम आपके वोट को, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप नहीं, हमने ये कहा है और हम अभी भी कहते हैं कि जो भी इलेक्शन जीत के इन दोनों ग्रुप में से आएगा हम उनको डे फर्स्ट वाले दिन वेलकम करेंगे और उनको मुबारकबाद देंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ये अपने जो जेन्युइन लोग हैं उनको ढूंढें। अब वो लोगों की शिकायत क्या है कि किसी की कोई क्लीनिंग कंपनी है, किसी की कोई दुकान है, किसी का कोई ऐसा बिजनेस है, अब लोग उनमें काम करते हैं, उन अपनी फैमिली के कार्ड दें, अपनी फैमिली का ये करें, बाबा वो क्यों उनसे मांग रहे हैं? जो जेन्युइन पीटीआई के अगर 50 मेंबर भी है ना, अगर 300 मेंबर भी हैं जैसा फराज साहब ने कहा, अगर 500 मेंबर भी हैं, अगर 1000 मेंबर भी हैं, वही लोग लें जो जेन्युइन हैं, जो कि उस विजन को देखते हैं, जो पीटीआई के हैं, ये इतने गमेले में ना जाएं। और मेरी इनसे गुजारिश है, मेरी इनसे, मैं एज ए मतलब के बड़ा भाई भी समझ लें, अंकल भी समझ लें। मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस इलेक्शन को अपने तक महदूद रखें, देखें आपके इस मामलात में ना ही नून लीग मुदाखलत कर रही है, ना ही पीपल्स पार्टी मुदाखलत कर रही है, ना ही जमात इस्लामी मुदाखलत कर रही है, कोई बंदा आपके मामलात में नहीं आ रहा। और आप अपने मामलात को खुद रखें, प्लीज कोशिश करें कि आप हमारे घरों तक ना जाएं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अपना इलेक्शन लड़ें, जो आप में से जीतेगा हम उनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन यह है कि ये बात आपकी दुरुस्त है, मां साहब की बात की मैं तायद करता हूं, मेरे तक तो नहीं आए लेकिन यह कि हमारे लोगों तक गए हैं और हमारे उन लोगों ने मुझे टेलीफोन करके कहा है, तो मैंने उनको ये कहा कि आप पीपल्स पार्टी के क्योंकि मेंबर हैं, लिहाजा आप उनको ये प्यार से कहें कि जी हम पीटीआई के मेंबर नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं सिर्फ वोटों तक महदूद रहें, वोट देने के बाद आप जो मर्जी करें, तो ये भी तो कोई बात ना हुई ना कि सिर्फ मुकाबला वोटों का है। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपने जो लोग हैं उनसे अपनी अपने वोट बनवाएं और उनसे अपने वोट लें। हम आपके किसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे और हम आपसे गुजारिश करेंगे, देखें मैं अपने लफ्जों को बार बार मैं आपसे हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने इलेक्शन को अपने तक रखें और हम आपके भाई हैं, आपके अंकल हैं, हम आपका हमने आपको ओपनली कहा है कि आप कोई भी पाकिस्तान की पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क के लिए काम करेंगे, पीटीआई को भी गवर्नमेंट के साथ बैठ के काम करेगी, तमाम जमातें यहाँ पे हैं और तमाम, और मुझे उम्मीद है कि अगर
1: मुजीब साहब फिर खबर जो हमारे पास जो खबर है फिर दुरुस्त है ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो डेफिनेट पीटीआई वाले भी महसूस करते होंगे कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आने वाले वक्त में पार्टी की भी बदनामी होगी, हम लोग भी किस तरह पब्लिक को फेस करेंगे, तो कहीं ये कोई इलेक्शन को आगे जा रहा है या कैंसिल होने जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो मेंबरशिप या मिलजुल कर कोई जो है जैनवन मेंबर बैठ के कोई फैसला कर लेंगे, मेंबरशिप बनाएंगे लेकिन आपस में फैसला कर लेंगे कौन सदर है, कौन नायब सदर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो है जो मेरे पास खबरें हैं। ये
2: असल बात यह है कि जी हम तो डे फर्स्ट थे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आपस में बैठ जाएं, आपस में इत्तेफाक करें, एक ग्रुप बनाएं, दोनों ग्रुपों में से लोग ले लें और बैठ के ना अपना टाइम जाया करें, ना लोगों का टाइम जाया करें, ना अपने ये पैसे जाया करें, ना अपनी ये एनर्जी जाया करें, अपनी एनर्जी कम्युनिटी जो डेनमार्क में बैठी है इसके लिए इस्तेमाल करें, अपनी एनर्जी जो है जो यहाँ पे हमारे मिसाइल है इसके लिए आगे निकलें, और बाकी जो है जब भी कोई बात होगी मैंने आपको कहा है कि हम जो भी मुस्बत काम होगा, मैंने हम अपनी मिसालें क्यों देते हैं, हम गवर्नमेंट में थे तब भी कम्युनिटी का जब मसला आया हम आपके साथ अम्बेसी के सामने खड़े थे, और हम आज भी अगर पीटीआई को हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर पीटीआई को कम्युनिटी के लिए कोई काम करना होगा हम उनका मुकम्मल साथ देंगे, शर्त यह है कि पाकिस्तान कम्युनिटी डेनमार्क के लिए काम हो, और सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होगी पीआईए, अगर पीआईए को अगर किसी लेवल पे भी लेके आते हैं जहां पे भी हमें कहेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। देखिए इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होती ना, इसलिए कि मैं बार बार ये कह चुका हूं मोहतन राज साहब, हम डेनमार्क में सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा मरना जीना बैठना उठना एक है। हम देखें अगर अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, हम सब लोग वहां पे मौजूद होते हैं, हम सब जमातों के लोग वहां पे मौजूद होते हैं, सब सोसाइटीज के लोग मौजूद होते हैं, सब दीनी जमातों के लोग मौजूद होते हैं, इसलिए कि हम एक हैं। और हम ये चाहेंगे कि हम कोशिश करें कि हम एक रहें और एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने मिसाइल को हल करें। देखें अपना अपना विजन सबका है, अपनी अपनी जमातें सबकी हैं, लेकिन अगर मिलकर काम करना है पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम है, आप उसके चेयरमैन है, आप सबको उनको बुलाएं और उनको बिठाएं और बोलेंगे कि पीआईए का मेन मसला है और भी कोई मसला है जो कम्युनिटी के मसाइल है उसके ऊपर हम बैठ के दोबारा देखें, हमने कम्युनिटी के लिए जो काम किए हैं वो आपके सामने है, यू नेशनलिटी, एमआरपी, पाकिस्तान हाउस, बेशुमार चीजें, उस पर उसके बाद जो पाकिस्तान एम्बेसी का रवैया था वो बेहतर हुआ, लोगों ने काम अच्छा किया, कम्युनिटी ने काम अच्छा किया, इसमें किसका क्या फायदा हुआ, इसमें फायदा सबको हुआ ना, इसमें तो ना किसी को स्टार लगे हैं ना किसी के स्टार उतरे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर यहाँ पे हुकूमती जमात के नुमाइंदे मौजूद हैं, चाहे वो इलेक्टेड हैं चाहे वो इलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हुकूमती जमात से उनका तल्लक है, वो पीआईए के लिए बाहर आए, हम उनका साथ देंगे। और मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि जी हम इलेक्शन जीतेंगे तो फिर हम एम्बेसी से बात करेंगे, ये बातें नहीं होती। आप अभी भी आपके पास सोर्सेज है, इलेक्शन हो आपके होने तक पता नहीं पाकिस्तान के इलेक्शन का क्या हो जाता है, पाकिस्तान में क्या हालात बन जाते हैं, अभी आपके पास जो है सोर्सेज हैं, अभी आपके पास तल्लक हैं, अभी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम आपका साथ हैं।
1: बड़ी जबरदस्त बात, आप बड़ी अच्छी बात कही जी, आप साथ देंगे जी साहब, इंशाल्लाह आपसे रابطہ रहेगा और ये चीजें जो है
2: डेफिनेट। दूसरा ये है कि मैं कमून के इलेक्शन,
1: मैं वही कहने लगा था कमून के इलेक्शन मेंबर में आ रहे हैं, बड़ी खामोशी है, ठंड है, बर्फ की तरह ठंड है।
2: देखे ना वही मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जितने भी हम यहाँ पे लोग मौजूद, खासकर मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो कि कम्यून के इलेक्शन में कम्यून के मेंबर्स रह चुकी हैं, कम्यून में उन्होंने काम किया हुआ है, हमारे पास माशाल्लाह पुराने भी हैं नए लोग भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसा तरीका बनाए, ऐसा कोई सबाब बनाए, ऐसे अच्छे लोगों को पढ़े लिखे बच्चों को आगे लेके आए ताकि वो कम्यून में हमारी आवाज उठा सकें, क्योंकि अभी कम्यून का इलेक्शन नवम्बर में सर पे है और अभी मैं माशाल्लाह जून खत्म हो रहा है और अभी तक जो है ना हमें कोई ऐसी इतला नहीं कि कौन से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, हमें इस पे काम करना चाहिए। और मैं दोबारा ये गुजारिश करूंगा, मेरी किसी बात पे कोई बंदे को अगर कुतिल आजारी है तो मैं माजर खाऊं, मैं सिर्फ आपको ये गुजारिश करूंगा, तमाम जितने भी हम सियासी लोग हैं, जितने भी हम मजहबी लोग हैं, सोसाइटीज के लोग हैं, हमने जो भी काम करना है मिल के करना है, बैठ के करना है, प्यार से करना है, मोहब्बत से करना है और इसी में हमारी कामयाबी होगी। अदरवाइज जैसे हम बट जाएंगे तो हमारा कोई काम भी नहीं होगा, और आपको पता है जब भी कोई चीज बटी हो तो उसमें काम मुकम्मल नहीं होता। हमारी मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि हम सब मिलके एक जगह देखें, मैं अगर

0: खामोशी खत्म तो होगी, खून से खत्म होगी, तूफान से खत्म होगी, ये तो टाइम बताएगा।
1: लेकिन आपका तजिया क्या कहते हैं कि जो हमारे गैर मुल्की बैकग्राउंड के हमारे सिटी काउंसलर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन तो बहुत कम हैं, तो ये अपने काम में एक्टिव हैं या ये भी छुट्टियों पे हैं?
0: अपनी वोकेशन तो कर रहे होंगे और आगे जब ये वापस आएंगे अपनी वोकेशन से तो फिर तो इनको काफी काम इनके साफ होंगे, क्योंकि जब ये वापस आएंगे तो 98 कम्यूनों के बजट बन रहे हैं, 4 रीजन के बजट बन रहे हैं, तो दीवर वगैरह वर्क से कहते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर क्या कहते हैं देखते हैं कि इनकी मसरूफियत काफी होगी और ऑपरेशन भी होगी, और हर पार्टी ने अपनी डेलीगेशन तो बना ली होगी जिनमें क्या कहते हैं डील करनी है ये इकोनॉमी की और बजट की, तो फिर इनकी मसरूफियत तो काफी हो जाएगी जब वापस आएंगे।
1: अदनान, लोग तो एमओ मैंगो फेस्टिवल पर हमारे लोग एक्टिव हैं, हो रहे हैं, बाकायदगी से हो रहे हैं, शादी ब्याह भी साथ साथ जो हैं वो चल रहे हैं, छुट्टियां तो सारी इसी तरह गुजर रही हैं, सियासत तो कम हो रही है लेकिन ज़रा शादी ब्याह पर सियासत तो होती रहती है, आप क्या कहेंगे?
0: सब देखिए सियासत तो हर जगह होती है और कहाँ पे है जहाँ पे सियासत नहीं है, मैं यही कहूंगा कि इंसान को अब देखना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, जब से ये डेनमार्क का इलेक्शन हुए दोनों काउंसिल नेशनल, तो आप एक माहौल देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए साफ होता जा रहा है और काफी सख्ती आ रही है, तो अब इसमें तो नजरअंदाज करके तो नहीं कर सकते बंदा, तो अब इस बात पर गौर करना पड़ेगा सबको कम।
1: अदनान, एक बात बड़ी अजीब है, हमेशा से हम सुनते जा रहे हैं कि सियासतदान मुसलमानों की बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? मुसलमानों को तो खुद ठीक होना चाहिए, अगर बात करते हैं तो ये मुसलमानों की एडवर्टाइजमेंट होती है।
0: दरअसल मसला ये है कि मुसलमानों की बात करते हैं मगर बात करें तो रजिस्ट्री कर भी करें, इंसान जब बात करते हैं ना तो कुछ पेनिट्रेशन भी होती है और कुछ गलत बात भी होती है, जैसे एक इस्लाम के बारे में बड़ा फैला हुआ है और इसका ये भी तो एक इसका इसका पहलू एक गलत होने लग पड़ा है ना, जो तैर तौर के पच्ची उठाने लग पड़े, और वो ये है कि अभी तक तो वो समोस है इस्लाम के, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो इनका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो डेफिनेटली मुस्लिम वुमन पे होगा, क्योंकि जो आ रही है उसके अंदर काफी
1: अदनान, डैनिश सियासी पार्टी है, डैनिश सियासी वो जमात है, डैनिश पीपल्स पार्टी है, सियासतदान बयान देते रहते हैं, इसी तरह जो रिलेटेड लोग होते हैं उन्हें भी अपना जवाब देना चाहिए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
0: नहीं ऐसी बात नहीं है मगर साहब उनके जो फैक्ट होते हैं ना वो बहुत गलत होते हैं, एग्जाम्पल जैसे उन्होंने एक फेसबुक पर लिख दिया हुआ था कि अब हमें हलाल खाना पड़ता है, ये किसी ने आपको मजबूर तो नहीं ना किया, जो पढ़ेगा वो यही समझेगा कि उनको जबरदस्ती हम हलाल करा रहे हैं, तो
1: ये तो लोग अदनान खुद समझ जाएंगे कि यहाँ किसको कह सकते हैं तुम हलाल खाना, और वो भी डैनिश पीपल्स पार्टी कह रही है जबरदस्ती मुझे हलाल खाना पड़ता है, कैसा मजाक है ये?
0: वो ही बंदा कहता है ना कि फिर बंदा उस चीज को उठाता है, बंदा उस चीज को बहस करता है, उनको समझाता है और फिर ही उनको समझ आती है कि बंदा बात सही कर रहे गलत बात कर रहे, और इससे ही पता चलता है। मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये 5 सितंबर 2026 को ये जो 1200-1300 बंदे हैं मेंबर हैं बस अभी तक ये जो डेमोन्स्ट्रेशन लेके आ रहे हैं इसको बस बंदा नाकाम कर दे तो फिर बंदे के लिए क्या कहते हैं एक पिक्चर है कि हम उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे।
1: तो जब डैनिश खुद इस बात की जो है वो अगर कानूनी इजाजत है वो तो देंगे, लेकिन अगर कानूनी मुखालफत करते हैं तो वो भी डैनिश करेंगे, तो हमें ज्वाइन कर लिया सैयद तुकीर हसन बुखारी शाहब ने, शाहब को आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा वो सब आपको आपकी टीम को अदनान साहब को और आपके लिस्टनर नाज़रीन सब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब,
1: शाहब बात चल रही थी कि आगे अदनान ने बात की है कि डैनिश पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें भी हलाल खाना पड़ता है, तो शाहब अगर कोई बंदा कहता है तो उनका राइट है, सियासी राइट है, वो कह सकते हैं।
2: जी, अदनान ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि चंद एक आदमी जो है ये सारी फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया पे घूम फिर कर, जैसे हम घूम फिर के इनकी खबरों को देखते हैं, ये सारे वही लोग हैं। देखिए, इस वक्त डेनिश फलके पार्टी जो है वो उसके लोग जो है, मैंने अगले दिन भी आपको भी भेजा था, अदनान को भी भेजा था कि एक आर्टिकल आया हुआ था फेसबुक पे, उसके अंदर मैंने लिखा था कि डेनिस जो है वो रशिस्ट नहीं है, और ये जो चंद एक रशिस्ट है ये मुफरित पार्टियों में चले गए हुए हैं, और इनको डेनिस जो आयन है वो भी नहीं आता, और ये मुफरित पार्टियों में देखेंगे। सोशल डेमोक्रेट की जो टॉप पार्टी है इसके अंदर जो बैठे हुए बंदे वो यंग आदमी है, और उनको बिल्कुल, अगर जाके आप मेरे फेडरेशन को पकड़ ले और उसको कहे कि आपने वो जो तुम्हारे वो किए हुए हैं, जो तुम्हारे मशीन है, उनके बगैर खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि फलानी फलानी आइन के अंदर कौन सी लॉ है इसके बारे में, और ये लॉ फोर्स है जो है पलके दिन में इसके बारे में तुम्हें बताओ, तो वो नहीं बता सकेगी। क्यों? कि ये अपने आईपैड, कंप्यूटर और इन चीजों पे मुनसर करते हैं, और अपने मशीनों के सर पे ये सियासत करते हैं, इनको आयन का जरती भर फर्क नहीं पता। अगर डैनिश आयन के मुताबिक यहाँ पे हलाल फूड जो थी उसकी सबसे पहले इजाजत जो होती
3: हाँ
2: और ये जो जो अब ये देखें, मैं आपसे बात कर रहा था तो बीच में वो फेक नंबर जो है जिनके अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, जिनको आज भी 3 आदमियों को उन्होंने पकड़ा है डेनमार्क के अंदर, ये बार बार हर बंदे को खसूसी तौर पर जो लोग पेंशनर हैं और जो फॉर्चुन पेंशनिस्ट हैं उनको टेलीफोन करते हैं, कभी पुलिस का कहते हैं, कभी गवर्नमेंट के अदारों का नाम लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे मैं वाजह
1: शाह
2: करता
1: साहब, इस
2: जाऊं
1: बात
2: मेरे
1: की क्लियर
2: लोगों
1: कर
2: को,
1: लें अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी? शाह साहब कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ तो लोग फेक नंबरों से जो है वो फोन करते हैं, उन्होंने जिक्र भी किया। तो क्या इस जैसे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है?
0: सब चेक बैलेंस होता है, मगर ये जो फेक नंबर से फोन कर रहे हैं ना बहुत सारी, ये बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली पर ये फोन इसलिए बुजुर्गों को करते हैं कि बुजुर्गों से ये फिर उनकी कॉन्टी नंबर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और इनकी बैंक कॉन्टी खाली कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और दूसरा, इन्हें एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है, अफ्रीका से बैठे हुए हैं, वहां से आपको फोन करते हैं और आप 50 करोड़ का बिल डाल देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, मेरा जिनके पास कहते हैं कार्ड का होता है, जिनके पास मेंबरशिप है उनके नहीं पैसे ज्यादा होते, तो इनके पास क्या कहते हैं काफी नए ट्रिक्स ने शुरू किए हुए हैं और काफी लोगों को परेशान किया हुआ है। ऑब्वियसली पुलिस को पता है, पुलिस वॉच आउट करती है, पुलिस का वॉच डॉग होता है, मगर मसला वही होता है कि पुलिस किस किस के पीछे पड़े, वो आगे इतनी मसूखियत है उनके लिए। इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर, रेगिस्तान के अंदर वो स्ट्रीट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस के पास भी तो एक लिमिट है ना। इस वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भी समर वेकेशन कर रहे हैं, तो अभी वो मन उनके उनके उनके अंदर क्या कहते हैं ये मालत है उनको, और इंशाल्लाह ताला वो कुछ करेंगे भी इस पे जल्दी।
1: शाह साहब, अदनान ने बात बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन शाह साहब आप देखे ना, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? आप तो निशानदेही करते रहते हैं, अदनान निशानदेही करते रहते हैं। शाह साहब, लोग अगर खुद ठीक हो जाए, मिसाल के तौर पर कानून तो कानून नहीं हरकत होना, हम कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाह साहब हमें खुद भी तो ठीक होना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। अदनान क्योंकि यंग आदमी है, इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स के अंदर, इसने खुल के बात नहीं की। आज के अखबारों में और पुलिस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वाजह है कि 3 जो है वो यहाँ के लोकल पकड़े गए हैं, और वो हमारे हम लोगों में से हैं, और उन्होंने फिनलैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरी जगह का भी जिक्र किया, कुछ बदमाश तंजीमों का यहाँ का जिक्र किया उन्होंने। तो ये मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जब तक उनको परमानेंट
1: नहीं
2: दांतों
1: शाह
2: से
1: साहब, किसी
2: सजा
1: का
2: नहीं हो
1: नाम नहीं
2: जाती
1: लेना, शाह नाम नाम
2: जी,
1: नहीं लेना।
2: इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप पकड़े गए हैं। और जिनके पास है कोपनहेगन से, जिनके जिनके घरों में से ये चीजें सब कुछ मिली है, तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि घर का बेहतर बेटी लंका जाए, ये हम लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करने पे नहीं, और हम कैसे ठीक करें राजा साहब, हमने इस मुल्क को तबाह किया, हमने अपने मुल्क को भी तबाह करने की बुनियाद रखी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने ये जो बात किया मैं इसको 2 मिनट में तफसीलन आपको बता सकता हूँ कि हमने क्यों जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसको भी उसकी भी जड़ें काटी और इस मुल्क भी हम जड़ें काट रहे हैं।
1: शाहब आप बताएं, जब आप लोग आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो क्या उसको ये जो कानून कायदे अक्सर जिक्र करते रहते हैं आप, क्या इन लोगों ने खराब किए या आपने खुद खराब किए?
2: जी हमने जब अपने यंगस्टर्स पे हर चीज छोड़ दी, जब हमने कहा जी हमारा बेटा हमसे ज्यादा डैनिश बोलता है, हमसे ज्यादा कानून समझता है, हमसे ज्यादा, हालांकि उसको मैंने जब ये चैलेंज करके कह दिया है कि मेरे फेडरेशन को या जिसको भी आप सामने बैठाए उसको कहे कि आइन की ये शिके जो है अचानक उनसे पूछ ले, वो आपको नहीं बता सकेगी। ये अदनान कितना अरसे से यहाँ पैदा हुआ है, इसको भी सारे आयन का नहीं पता। ये चीजें जो होती हैं वो लोग करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और उनके ऊपर डेली रिसर्च करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ हमारे यंगस्टर्स के ऊपर हमने सबको छोड़, वो छोड़ो जी मेरा बेटा तो भाई वो तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो कोई पार्लियामेंट का जो लॉज है उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो कोई वकील तो नहीं बन रहा, अगर वकील भी बन रहा है तो वो जो सब्जेक्ट उसके है उसको पढ़ रहा है, वो सब कुछ हम लोगों ने जो बुनियाद रखी है ये झूठ पे रखी है। हम लोग यहाँ पे बस शो मारते हैं और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को हम तबाह बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं वहां पे करोड़ों रुपए, यहाँ के लाखों करोड़ को जब चेंज करते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं, वहां हम शो मार के आते हैं तो हमारे खानदान वाले लोगों को कहते हैं देखो फलाने का बेटा इटली गया, फलाने का बेटा डेनमार्क गया, फलाने का लंदन गया, वो कितना कमा के ला रहा है तुम भी जाओ। वो बेचारे डंकी लगाते हैं अपनी जिंदगी खो बैठते हैं, ये हमारे लोगों की खामी है। अगर हम वहां पे सच बोले कि हम कितनी मेहनत करते हैं, 12 12 घंटे 13 13 घंटे टैक्सियां उठाते हैं, लोगों के सामान उठाते हैं, नशेड़ियों को ड्राइव करते हैं, खाना हमें सही तरीके से नसीब नहीं होता, हर चीज का हम सच बोले, तो ये चंद एक पैसे जो हम बैंकों से उधार ले आए या दोस्तों से मांग के ले आए हैं और पूरे खानदान के पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ ले आए हैं, इसको हमारी शो ना समझे, हमारी मजबूरी समझे, तो फिर लोग जो है वहां पे भी वो कहेंगे कि ठीक है भाई बाहर से तो हम अपने मुल्क में सो गए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। जो बच्चा 25 30 लाख रुपया दे के एजेंट को बाहर आने की कोशिश करता है उसकी सेविंग हमसे ज्यादा है तो वो आ रहा है, तो हमारे पास तो इतनी, किसी के पास भी इतनी सेविंग जो है वो कम होती है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमें इस जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसमें कम से कम ऐसे हालात पैदा करें कि जो हम पे वो 5 नंबर लग चुकी है हम उसको जो है हटाने में यहाँ तंजीमात की मदद करें, वो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे।
1: शाह साहब
2: मैं ये बता
1: तंजीमात की
2: दूंगा
1: बात करते हैं, शाह साहब तंजीमात की बात करते हैं, तो सियासतदान खुद आपस में लड़ रहे होते हैं। शाह साहब आपको सियासत का नहीं पता, आप सब सियासतदानों को जानते नहीं हैं।
2: जी वो जो सियासतदान आप बात कर रहे हैं वो आजकल सब पाकिस्तान की सियासत करते हैं, अगर डेनमार्क की सियासत की जाए और डेनमार्क के अंदर हमें बताया जाए। देखे मैं खुश हूं, मैं राजी हूँ अदनान पे कि इसकी फैमिली है, इसके बच्चे हैं, इसके माँ बाप हैं या इसके दोस्त अहबाब हैं, लेकिन ये भी जिस वक्त आप इसको टेलीफोन करते हैं ये भाग कर आ जाता है और अपना टाइम जो है वो आवाम के लिए दे रहा है, ये बड़ी खुशानदा बात है। दूसरों को भी चाहिए, क्या उनको सुरखाब के पास लगे हुए हैं? मैंने तो कई काउंसलर्स के बारे में ये सुना कि उनके घर हमारे बच्चों के बारे में कोई बात करेगा तो हम ये कर दें वो कर दें, और भाई डेनमार्क के अंदर जो है यहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं पुकार जाता, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। आप रहे, आप अगर कानून को जानते हैं तो कानून को बताना आपका फर्ज है क्योंकि आपने वोट लेने हैं। मैं आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि अगर हमारे लोगों ने अब भी सीधा रास्ता ना अख्तियार किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये डेंटो को वोट डालेंगे, क्योंकि जब 70s 80s में हम लोग यहाँ पे थे तो हम डेंटो को वोट डाल देते, यही मोम लिफ्ट ऑफ यही सारे जो थे पुराने पुराने, ये सारे के सारे हमारी इज्जत करते थे, ये उस वक्त जवान थे और ये हमारे लिए
1: तो
2: अच्छा
1: शाह साहब
2: कानून लेके आते थे।
1: उस वक्त ये इतबार करते थे ना।
2: जी बिल्कुल, हमारे पास उस वक्त ना इतनी बड़ी गाड़ियां थी, ना हमारे पास शो मारने के लिए कोई चीज था, ना यहाँ पे शादी शादी हॉल वगैरह थे, ना कोई इतनी चीज थी हमारे लिए। हम लोग सारे आराम से जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, बसों पे जाते थे, ट्रेनों पे। ट्रेन बहुत जगह ऐसा है पहले, और आगे पीछे ट्रेन ही नहीं होती थी, तो बंदे पैदल भी चले जाते थे। तो लोग कहते थे ये मेहनत मेहनत करने वाली कौम है, डैनिश कहते थे ये कौम। आज भी आप देख रहे हैं कि ये हलाल का मसला जो दरान बता रहा था, मैं इसको पढ़ रहा था अभी, तो उसके अंदर आप देखें कि पांच पांच छह सौ लोगों ने एक एक बंदे को जिससे अच्छी बात किया, उन्होंने कहा कि कोई हमें ट्रिंग नहीं कर रहा, हमें कोई मजबूर नहीं कर रहा कि हम हलाल खाएं। तो लेकिन एक एक औरत यहां तक निकली है, उसने कहा कि हलाल खाने में क्या गलती क्या, वो भी डैनिश है। देखिए आप इनकी जबान में आप इनको लिखे और उसकी वजूहात जो है वो आप लिखे तो ये लोग आपको सुनते हैं। यकीन करें कि कल मैं ग्लोस्टॉप गया हुआ था, तो ग्लोस्टॉप के अंदर मेरी आपसे उस वक्त बात हुई थी, आप ट्रैवल कर रहे थे उस वक्त, मैं ग्लोस्टॉप गया तो ग्लोस्टॉप में मेरी दो चर्च की औरतों से बात होगी, और वो उन्होंने कहीं वो जो मैं और आप लोग गए थे उधर फर्क थिंग के अंदर डिबेट थी, तो वहां वो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसकूल हमने तुम्हें देखा, तो मैंने कहा हाँ मैं वहां गया था, हाँ मैं वही था। तो वहां पे बात हुई, तो उन्होंने ये चीज मानी कि आप मुसलमान जो हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट मानते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर आप ये बताएं कि जीसस क्राइस्ट के नाम को, मरियम के नाम को, हजरत बीबी मरियम के नाम को आप जलाना पसंद करेंगे? कहती है नहीं नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा उनका नाम तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। कहती है हाँ बहुत जगह, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने बहुत से लैंग्वेज अपना रिलीजन कोर्सेज किए हुए हैं। तो मैंने कहा फिर तुम लोगों को ख्याल नहीं आता कि किस तरीके से तुम लोगों ने कुरान को बंद किया?
1: तो शाह साहब, तो आपने बताया वो समझदार लोग हैं शाह साहब, वो बातें समझते हैं आप लोग या दूसरे लोग जो बोलते हैं। तो अदनान आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पैदा हुए, हर चीज को आप समझते हैं, तो आप क्या गाइडलाइन देते हैं ये नौजवान सियासतदानों को जो कम्यून में भी बैठे हुए हैं, तजुर्बा उनके पास भी, आप कहीं से छोटे होंगे कहीं से बड़े होंगे, तो जो बातें हम आगे पीछे सीना गजट चलती रहती हैं, सीना गजट जो अखबार निकलता है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ये नौजवानों से भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, उसको हम हाईलाइट तो यहां नहीं करना चाहते।
0: सबसे पहले होता है कि आप उतना ज्यादा सियासतदान होते हैं ना, तो आपको कोई बच्ची हो तो आपके सीनियर हैं, आपको उनको पूछते हैं और उनकी बातों को देखते हैं।
2: इमरान की आवाज क्लियर नहीं है।
0: तो मैंने ये कहा कि जो जो हम लोग सियासतदान होते हैं ना सीनियर, उनकी बातों को देखते हैं और उनको गौर करते हैं, और हम गाइडलाइन यही देते हैं कि जो खड़ा होना चाहता है ना उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके अंदर खड़े होने के लिए ना प्रिपरेशन की जरूरत हो। आप जब कोई काम करना चाहते हैं, रख करने होते हैं, तो आपको काफी चीजों को देखना होता है, काफी क्या कहते हैं टाइम देना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेक्स्ट कमिंग स्टेज में जब ये वापस आएंगे के बाद, तो सबको जितने सिटी काउंसिलर हैं, जितने डीपीटी काउंसिलर हैं, जितनी पार्टी की बींग होल्डर है, उनका सबसे बड़ा काम यही होगा इस वक्त देखना कि बजट कैसे बचता है, और उसके लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपने हर सूबे को देखना होता है कि किस का एरिया है, जिसका स्कूल हो गया, जिसका बुजुर्ग हो गए, जिस तरह हो गया, हर एरिया को देखना होता है। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल है, बुजुर्ग है, अगर अभी एक और भी तो चैलेंज है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है, जैसे ये क्राइम का बहुत मसला है, इसके अंदर पुलिस को भी रिसोर्स चाहिए, पुलिस ने भी देना है कि किसको टारगेट करना है और कैसे इन चीजों को लेके जाना है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसमें जिस में देखें। और तो सबसे बड़ा जरूरी ये भी होता है कि आप जैसे आप किस उजवेल में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल आप स्कूल उजवेल में बैठे हुए हैं, तो आप ये देखें कि स्कूल उजवेल की चीजें कौन सी हैं, स्कूल कैसे चल रहे हैं, स्कूल को किस तरह की जरूरत है, पैसे हैं स्कूलों के पास की चीजें हैं कि नहीं, तो ये सारा क्या कहते हैं देखना होता है। हमें भी लोग बड़ा सवाल करते हैं, हमें भी बड़ा पूछते हैं, तो हम उनको वही जाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो गलती हमसे होती है, अगर कोई मिस्टेक होता है हमसे हमें बताएं, फिर हम उसको ठीक कर दें।
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, बात तो सारे करते रहते हैं, मीडिया पे भी चलती है, अखबारात में भी चलती है, तो शाह साहब आपको नहीं पता जो कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता, जो कुछ अब मसाजिद में एक जगह पे हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, तो शाह साहब क्या इसमें डैनिश करते हैं या डैनिश तंजीमें कर रही हैं? गलतियाँ हम खुद करते हैं तो इसका नुकसान जब काफ़ी देर जाकर होगा पता, उस वक्त हमें लगेगा। शाह साहब, हम खुद एक दूसरे के नुकसान करते हैं।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल अदनान ने बिल्कुल सही बात की है। मैं इससे अवेयरनेस हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। मसला यह है कि जब तक
1: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई नतन्याहू कर रहा है, ट्रंप कर रहा है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन इवन हमारी मेटर फेडरेशन जो है या हमारे जो मॉडर्न मैसेज में था वो भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कह रहे। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपनी अपनी जात में अपने आप में मगन इस कानून की धजियां उड़ा रहे हैं, हम खुद करते हैं ये। हमें कोई आगे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे करो, कोई हमें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, हम आराम से रह रहे हैं, बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल।
1: तो शाह साहब, हम जब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो पांव तो जख्मी होगा।
2: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि अभी देखें सबसे बड़ी ये बात होती है कि अवेयरनेस किसने देनी है। अवेयरनेस देनी है सोशल वर्कर ने, अवेयरनेस देनी है जो सियासत से तल्लक रखते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे जी कि मैंने किताब लिखी, मैं पाकिस्तान चला गया वहां पे मुझे ये मेडल मिले, अब मैं ये कहूँ कि मैं लंदन में चला गया वहां मैंने बड़ी अच्छी सियासी तकरीर की, और मैं जर्मनी में चला गया वहां मैंने जाके इतना, तो ये फलाने फलाने पॉलिटिशियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने इस कौम के अंदर जो देखे, जो हमारे मेरे साथी आए हैं 70 से, उनके लिए सबसे जरूरी ये बात है कि जब वो पेंशन पे जा रहे हुए, हमने 500 दफा उनको ये बात बता दी हुई है कि उनके जो उस वक्त SID के और यूनियन के किसी भी यूनियन के मेंबर थे, तो वहां उनकी उल्विका फिशिंग और दूसरी फिशिंग जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस है उनकी हुई है, और वो जो है वो पेंशन वाले देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा पेंशन के मेंबर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप होता है कि जो 40 साल इस मुल्क के अंदर काम करता है, 40 साल काम करता है, उसको ये पूरी पेंशन देते हैं, फल के पेंशन। वो फल के पेंशन होती है तकरीबन 8,000 के करीब, और जो बंदा जो यहाँ पे अपने पूरी फॉर्म को फिलअप नहीं करता उसको ये कम से कम पेंशन ये देते हैं। अब लोगों ने इसका सहारा क्या ढूंढ लिया हुआ है,
1: तो शाह साहब इसके लिए किसने आवाज उठानी है? मीडिया तो आवाज उठाता है, तो क्या कमूनों से आवाज उठ रही है?
2: ना, बिल्कुल नहीं, यही तो बात दलान को चाहिए कि क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर सोशल वर्कर है, इसको चाहिए कि खुल के ये बात करे। अब हमारे लोगों को ये पता नहीं, हमारे लोग जो हैं वो दानिश के तरीके से तलाक ले लेते हैं, लेकिन इस्लामी तरीके से कहते हैं कि हमारी शादी है, और वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, और यहाँ पे पेपर भरे पड़े हैं कि ये फॉरनर्स जो है ये कर रहे हैं। कल को जब ये बात आती है तो
1: इसका हाल भी होना चाहिए ना। देखने शाह साहब, अगले इलेक्शन आ जाएंगे, कम्यून के पता नहीं चलेगा कि अब तो कहते हैं लोग अभी हुए, इतना अरसा ही नहीं हुआ, तो कम्यून के तो एकदम आ जाएंगे, पार्लियामेंट के भी किसी टाइम हो सकते हैं, कम्यून के तो अपने टाइम पर होंगे। अदनान, मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर इसका कोई हाल बताए ना।
0: सब ये देखिए, ये तो इंसान को देखना चाहिए जिस पर ये बात की गई है कि आप यहाँ का सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आपने जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके लॉ को फॉलो करें। आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा मुसीबतें बनेंगी। तो इसका तो यही हाल है कि बंदा जिस मुल्क में रह रहा है उसके लॉ को आप फॉलो करें और उसको देखें और उसको रिस्पेक्ट करें, ये ना करें कि आप लोग उसको ब्लॉक करें। ये जो ये शादियों का मामला है, ये तो काफी अरसे से लोगों को पता है और मुझे अटॉर्नी को भी पता है कि क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम इस पे देखेंगे भी اور اس کا کچھ حل نکالنا بھی پڑے گا.
1: نال مکالا پڑے. شاہ صاحب آخر میں عدنان کا شکریہ بھی ادا کریں. شاہ صاحب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ جتنے قانون سخت ہوئے وہ ہماری اپنی وجہ سے غیر ملکیوں کی وجہ سے ہوئے. قانون پہلوں میں بہت زیادہ نرمیاں تھیں, اب جتنی چیزیں ہماری بن چکی ہیں غیر ملکیوں کی, اگر ہم ایک دوسرے کی شکایات کر کر ان کو خود نقصان دیں گے تو شاہ صاحب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ڈینشوں کا قصور ہے, ڈینش پیپلز پارٹی کا قصور ہے؟
2: نہیں جی بالکل نہیں. اب سمر فیری ہیں, لوگ جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ یونین پہ ہیں, بعض لوگ بمباری کے پیسوں پہ ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ فورٹس پینشنسٹ ہیں یا پینشنسٹ ہیں, ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ رائزنگ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنے اپنے اداروں کو جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بتا کر جائیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ بہت سارے کیسز بن رہے ہیں بہت زیادہ. اب تو یہ بائی لا ہو چکا ہے, اس کے اوپر میں کہوں گا عدنان بھی جو ہے اگلی دفعہ تیاری کر کے آئے, یہ تو قانون بن چکا ہے. یہ تو اب آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ سے زائد آپ جو ہے ڈینش پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو 6 ماہ سے زائد اس ملک کے آپ باہر نہیں رہ سکتے, اور اگر 6 ماہ سے 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو آپ کا ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق چلا جاتا ہے اور آپ کی ہر چیز جو ہے سوئس گرین یلو کارڈ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ہاں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اپنی کمیون کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے جو ہے اجازت لے کے جائیں, پھر آپ 2 سال چھوڑ کے 10 سال دوسرے ملک میں رہ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے کافی لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو بڑے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ یگسٹر سے یہی امید کریں گے, عدنان سے یا دوسرے جتنے بھی ایکٹیو سوشل ورکر ہیں, کہ آپ لوگ آگے آئیں اور آ کر تو ریڈیو پہ جو لوگ سنتے ہیں ان کو انفارم کریں. تو عدنان میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اچھے مسائل لے کے آ رہے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں کہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو بیسک ان کی ویل چیکس ہیں اگر آپ وہ پڑھیں اور آج کے جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں ان سے ہم لوگ مقابلہ کریں تو لوگوں کو بتائیں یہ کتنی اچھی پارٹی ہوتی تھی اور اب اس کے اوپر کون لوگ راج کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم لوگ کھل کے بات کریں گے. جی راجہ صاحب.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। 19/7/2026 का प्रोग्राम है। डेनमार्क में इस वक्त 12:08 हुआ चाहते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 2:08 हुआ चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मीडिया का एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो कारोबार के लिहाज से भी अपना काम करते हैं, लेकिन वो ब्यूरो चीफ भी हैं और अपनी अखबार, अपने टीवी के लिए जो खबरें अखबार उसके लिए ये बड़ा काम करते हैं, और गुजरात में एक ही हैं जो खुलकर बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और आप लोगों के मसाइल को एज ए मीडिया उजागर भी करते हैं। बाकी किसी से रजामंद होना, मानना या ना मानना और बात है, लेकिन एक साफी होने की हैसियत से अपना काम जो है हर आदमी को करना चाहिए और माइंड भी नहीं करना चाहिए। अमर कुरैशी साहब, हम आपको कोपेनहेगन की फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी जी, वालेकुम सर, साहब बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
1: अमर साहब, आपकी खबरें खबरों में पढ़ते रहते हैं, खबरों के साथ खबरें चलती रहती हैं, लेकिन आपके शहर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें ढोल बाजे घोड़े और मार्की में प्रोग्राम हुआ और बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, आप क्या कहेंगे?
2: जी राजा साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में ऑनलाइन लिया। सर मैं सबसे पहले एक कहूंगा, कल एक प्रोग्राम हुआ नून लीग का के इलेक्शन के हवाले से राजा सदीक साहब का, तो इसमें मैं यह कहूंगा कि कल जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें बड़े बड़े लीडर तो आए हैं जो गुजर खान से, जिनका एक नाम है, जिनका एक पहचान है, जो नून लीग से काफी अरसे से MNA की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और यहाँ के जिले नाजम भी रहे हैं और नून लीग से जनाब MNA मुंतखब होकर पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इस हवाले से मैं कहूंगा वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसके हवाले से दरार पड़ गई जिसकी वजह से जनाब लीग को बहुत ज्यादा खदशा है कि नून लीग को यहाँ का आज का प्रोग्राम जो है शहीद सराफ साहब के घर में रखा गया है उसमें राजा जवेद खिलाफ करेंगे वो एक अलग प्रोग्राम होगा, कल के प्रोग्राम में वो नजर नहीं आए, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का कहना है कि ये जो है अक्सर बाहर से जो मलिक इब्रार साहब है, मलिक इफ्तिखार साहब है और निबासी साहब और जो भी है पिंडी से बहुत बड़ा काफिला अक्सर नहीं इस जलसे में शामिल हो सके, तो जबकि अगर राजा जवेद इखलास साहब यहाँ होते और ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते तो फिर मेरे अंदाजे से कि ये बहुत बड़ा इस तारीखी जलसा होता और जिसमें नून लीग जैसा पहले भी यहाँ कामयाब रही एक होने की वजह से, मगर अब बहुत ज्यादा नुकसान है नून लीग को कि दड़ाबंदी का शिकार हो गई है ये, तो आज का जो आज भी जो है प्रोग्राम एक शहीद सराफ साहब के घर रखा गया है जवेद खिलाफ साहब ने, वो शाम 5 है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि हो सकता है आज मरियम औरंगजेब साहब मौजूद हो इस जलसे में, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ना कोई शोर शराबा ना कुछ ना कुछ, तो बाकी जो है मैं नून लीग को इस वजह से हवाले से शहर में कब चमकिया के बहुत ज्यादा नुकसान भारी नुकसान होगा है, क्योंकि ये आपस की रंजिश आपस की उसकी वजह से हमेशा जिस भी पार्टी में आपस एक इलाके में पार्टी में किसी में जब आपस में रंजिशें होती हैं, धड़ेबंदियां होती है, तो वो उसका नुकसान पार्टी को होता है। सर
1: कुरैशी साहब, भट्टी साहब के और राजा साहब के तालुकात बड़े अच्छे हैं, मलिक इब्रार साहब आ जाते हैं पिंडी से, हालांकि गुजरखान के लोगों से तल्लुक है, पिंडी ठीक है पार्टी के लिहाज से सबको आना चाहिए, राजा सदीक साहब हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, उनके जो ज्यादा तालुकात हैं राजा जावेद इखलास साहब के साथ, उससे पहले भी उन्होंने अपने घर में प्रोग्राम किया, लेकिन भट्टी साहब का उनको ना बुलाना, राजी ना करना, और जिस तरह आपने निशानदेही किया एज ए मीडिया कि आपस में ये लड़ते रहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश में, तो फायदा जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब लेंगे, लेकिन वो भी डुडियाल वालों की तारीफ करते हैं, गुजर खान वालों की तारीफ कम ही लोग करते हैं।
2: सर ऐसे ही है, देखिए आज से पहले 2002 के इलेक्शन से पहले नून लीग का गढ़ कहलाया जाता था ये गुजर खान, इसमें देख लें आप कभी भी जो है मुकामी इलाके राजा परवेज अशरफ साहब थे कभी भी वो मुंतखब नहीं हो सके, इस के जनाब अली जबकि एक इलेक्शन हुआ था जिसमें चौधरी रियाज साहब दोनों सीटों से नून लीग से जीत गए थे, तो राजा नादर परवेज साहब को फैसलाबाद से लाके गुजर खान से लड़ाया गया तो वो भी जीत गए थे, तो नून लीग का गढ़ कहलाया जाता था, मगर उसके बाद जब से ये रंजिशें हुई हैं उसके हवाले से जो है ना जब से नून लीग को यहाँ काफी नुकसान हो रहा है, मैंने आज से 11 साल पहले की खबर लगाई थी कि आपस में धड़ेबंदियां जो पार्टी को नुकसान लगी, वो आज भी इसी तरह जनाब अली वो मौजूद है कि आपस में रंजिशें, आपस में पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ, वो तो इससे पार्टी को नुकसान होता है राय साहब, आप देखें आप आज से जनाब अली अब इलेक्शन आ रहा है जम्मू कश्मीर का, तो इसमें देखिये बाहर से बड़े लीडरान आ जाते हैं, अब मुकामी लीडरान मौजूद ना हो तो पार्टी पे बड़ा असर पड़ता है, ये कारकुनों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इस तरह जवेद इखलास साहब भी एक उनका सियासत में एक नाम है, एक उनकी पहचान है, उनके अपना एक हल्का बाब है, पर कल काफी देखा गया कि उनके जो करीबी थे वो कल जलसे में वहां मौजूद नहीं थे। तो जिसकी वजह से आज उन्होंने एक जलसा रखा हुआ है शाह इसराफ की रहायशगाह पर। देखो अब इसमें क्या होता है या कितने लोग इकट्ठे होते हैं या क्या ये अपनी पावर शो कर पाएंगे राय जवेद अखलास साहब या अपना एक जनाब वो अलका जो इनका है वो वहां पे मौजूद होगा, ये फिर आज शाम को देख के बताया जा सकता है।
1: कुरैशी साहब, नून लीग का मीडिया सेल नजर नहीं आया सामने, जो हो सकता है आपने देखा हो लेकिन उस तरह नमायां नजर नहीं आया, साफी भी नमायां जो है वो नजर नहीं आए, जो बड़े बड़े नाम हैं आपको भी हमने नहीं देखा। डेफिनेट आप मौजूद होंगे लेकिन कवर करने वालों ने अपना अपना तरीकाकार होता है। तो कुरैशी साहब, नून लीग में जावेद इखलास साहब का बड़ा नाम है, भट्टी साहब वहां मौजूद थे, राजा जावेद इखलास साहब का बड़ा पोस्टर बैनर लगाया हुआ था लेकिन भट्टी साहब उस पूरे प्रोग्राम में खुश नजर नहीं आ रहे थे।
2: सर भट्टी साहब का हल्का पीपी नो है सर, उनका इलाका लगता है मंदरा वगैरह जातली वगैरह यहाँ के, वो अक्सर उनका मीडिया से जो उनका अपना तल्लक वल्का वो अपने इलाके के साथ है। ये जो इलाका है इसमें जो है ज्यादा नून लीग का जो है जावेद इखलास साहब का वो लीड करते हैं और वो जब भी कोई प्रोग्राम होता है पटवार प्रेस क्लब होता है या मुकामी साफी उनसे मुकायदा रबते में रहते हैं। तो कल वैसे किसी ने इस तरह हमसे रबता नहीं किया कि आज जलसे या प्रोग्राम में आओ, एक मैसेज जरूर चला था पर मैसेज का ही होता है कि वो एंड टाइम पे चला है, वो कोई देख पाया कोई नहीं देख पाया कोई, वो इस वजह से काफी ज्यादा जो है ना वहां पर जो है ना साफियों की तादाद बहुत कम थी और कवरेज के लिहाज से भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वहां पे वो दिखाई दिया, क्योंकि हम आज के अखबार भी में भी कोई इतनी हालांकि सीनियर मिनिस्टर थी वो इतनी लीड वगैरह या इतनी खबरें वगैरह भी लग पाई है उस हवाले से जिस तरह एक मीडिया का हक होता है या जिस तरह एक मीडिया को वहाँ पे कवरेज होती है वो देनी चाहिए थी।
1: कुरैशी साहब आखिरी सवाल है, काफी मसरूफ है आप, कि मरियम औरंगजेब साहब तशरीफ लाई, बहुत करीब है वजीर आला पंजाब के मरियम शाह शरीफ के, इसी तरह मलिक इब्रार साहब आए वो भी बड़े करीब हैं, इसी तरह जावेद अपना अब्बासी साहब जो अनीफ अब्बासी साहब तशरीफ लाए या दूसरे लीडरान जो है तशरीफ लाए, भट्टी साहब भी पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, तो कुरैशी साहब इनके मुंह से पुठवार यूनिवर्सिटी का और जिला बनने का नाम क्यों नहीं निकलता, इनकी जबानें बिल्कुल कंग क्यों हो जाती हैं, बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं ये?
2: जी राजा ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, ये आज से नहीं सर, ये शुरू से ये गुजर खान का, देखिए गुजर खान में ना अभी तक हमारे इलाके के प्राइम मिनिस्टर तक रहे हैं, इससे बड़ी क्या ओहदा होगा हमारे लिए, ठीक है वो देख ले, अभी तक गुजर खान में हमारे ना कोई अच्छा हॉस्पिटल बन सका ना कोई यूनिवर्सिटी बन सकी ना कोई ऐसा कोई हुआ कोई तबी सहूलियात के हवाले से भी, अभी भी आज का ये है कि गुजर खान में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट कोई होता है उसे फौरन ये कह देते हैं रेफर पिंडी कर देते हैं, जो काफी ज्यादा नुकसान होता है, रास्ते में कई मरीज जो है वो दम तोड़ जाते हैं। तो इस तरह के रहसा भी ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्री है कि हमारे से मुंतखब होते हैं पर इस पर तवज्जो को नहीं देता। आज गुजर खान में हर महकमा वापता का देख लें आप, बल्दिया का देख लें आप, हॉस्पिटल का देख लें आप, कोई भी देख लें कोई अपने जिस तरह एक ड्यूटी होती है ऐसे वो कोई भी सर अंजाम नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं कह इसकी ना ये है कि आपस में रंजिशें आपस में, हालांकि देखें अगर राजा परवेज अशरफ मुंतखब हुए हैं MNA वो गुजर खान के लिए हुए हैं, वो अगर उनका एक अपना बहुत बड़ा कद है अपने बहुत बड़ी पहचान है, वो अगर चाहे तो वो सूबाई मिनिस्टर को भी कह के वो वफाक पे भी कह के गुजर खान के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। वो राजा शौकत अजीज भट्टी साहब ये तीसरी चौथी दफा MP बन रहे हैं, इनका भी एक बड़ा पहचान है अपने नाम है, अगर राजा शौकत भट्टी साहब भी पंजाब असेंबली में वो आवाजें भी पहले भी उठाते हैं अभी भी उठाई उन्होंने पिछले दिनों बाद, पर वो अमली काम कोई नहीं होता है सर, हॉस्पिटल के लिए उसी तरह कोई तबी सहूलियात नहीं है ना कोई मेडिकल कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कुछ है, जिसकी वजह से गुजर खान को के अवाम भी बहुत ज्यादा इससे मायूस जो है ना वो बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं।
1: कुरैशी साहब चलते चलते जावेद कौसर साहब भी कोई बरी उल्जिमा नहीं है, वो मासूमियत से जवाब बयान देते रहते हैं, हालांकि वो अपोजिशन में पार्लियामेंट पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, जिन लीडरान के आपने नाम लिए राजा परवेज अशरफ साहब भट्टी साहब राजा जावेद इखलास साहब और इसी तरह बड़े नाम है जो है बाकी नाम भी हैं जो तहसील में या गुजर खान में या जिला में उनका नाम है, लेकिन जब जिले की बात होती है तो ये सारे भाई भाई हैं, वैसे सारे इनके आपस में इख्तलाफात है।
2: जी सर सियासत में जाओ तो उसमें तो सबके इख्तलाफात हो रहे हैं, वैसे तो सब ये देखें किसी भी पार्टी में किसी शादी फंक्शन में किसी उसमें देखिए आप एक दूसरे के साथ हंसते हैं बातें अच्छी तो फ्रेंकली करते हैं आपस में, इनके अच्छे तालुकात है अच्छे मुरासिम है, इनके आपस के घरेलू भी मुरासम होते हैं, इसमें उन्हीं सियासत के उसमें आते हैं तो फिर तो जहर है सियासत होती है सर। तो
1: खुश होते हैं देखिए हमने किस तरह इनको बेवकूफ बनाया हुआ है, लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं गलों में हार डाल रहे हैं, तो ये कहीं वलीमे और बाराते लूटने वाले तो नहीं सियासतदान
2: सर? बस आप राय साहब ये मैं आपको आप मेरे से सीनियर है आपको माशाल्लाह इस चीज का ज्यादा इल्म होगा तो आप माशाल्लाह वो बाकी ये है कि बदुआ करें गुजर खान के लिए कि अल्लाह कोई अच्छा यहाँ पे कोई मुंतखब हो कोई अच्छा गुजर खान
1: कुरैशी साहब चलते चलते ये जो आप
2: परेशान हाल है
1: अभी जो काम हो रहा है जो नीचे बन रहे बाईपास बन रहे हैं तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं नाजरीन को सामाइन को।
2: सर ये कोई सियासी नहीं है, ये हमारे गुजर खान के एक है सुबोध ब्रिगेडियर इजाज कमर साहब उनका तलक मिसे से है, वो NHA में इस टाइम इस सर अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो ये उनका उनका जो है ना ये मनसूबा है सर, ये उनको बाकौल उनके उन्होंने कहा था कि मैं गुजर खान के लिए वो काम करूंगा जो किसी ना किया, और ये बहुत बड़ा मनसूबा है सर, ये वक्ती तो अवाम को परेशानी है इस मनसूबे से, बहुत ज्यादा ज्यादा लोग डिस्टर्ब हैं लोग ज्यादा, मगर ये कुछ दिन का डिस्टर्बिंग है कुछ दिन का वो होगा, मगर आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा मनसूबा, जो आए दिन रोड हादसा होते थे GT रोड पर, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह कोई रॉन्ग पार्किंग करता था, कोई रॉन्ग क्रॉसिंग करता था, कोई इससे बहुत ज्यादा नुकसान, पर ये गुजर खान की तारीख में ये बहुत बड़ा मनसूबा है सर, जो ब्रिगेडियर एजाज कमर साहब ने जो है ना ये मंजूर कराया, और वो इसको जो है ना लीड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये गुजर खान के लिए बहुत बड़ा मनसूबा है, और इससे गुजर खान को अवाम बहुत मुस्तफीद हो,
1: मीडिया को इस पर नजर रखनी चाहिए। तो ये क्या चर्च वाकई जो सड़क किनारे था उसको गिरा दिया गया है इजाजत से?
2: जी बिल्कुल सर, बना उसको गिरा दिया गया है, क्योंकि वो था वहां पे इंटरपास होगा, वो इसका क्या नाम दो इंटरपास होंगे, जो एक बड़की मोड़ से लेके टेक्निकल कॉलेज तक होगा, दूसरा बल्दिया गुजर खान से लेके गुलियाने मोड़ तक होगा, तो इस मद में वो आया था, तो उन्होंने जो है ना वो तोड़ दिया, बल्दिया की काफी जगह थी, काफी यहाँ पे पार्क बने हुए थे, काफी वॉक एरिया था, वो सब जो है तोड़ दिया गया है, तो इस वाले से जो है ना एक बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा मंसूबा है गुजर खान के लिए।
1: कुरैशी साहब, चलते चलते आप अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे? आपको बहुत सारे लोग दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं।
2: सर बस मैं एक यही पैगाम दूंगा कि बस हर इंसान वो दुआ करे कि बस अपने लिए कि अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे, अच्छे अच्छे वो करे जो अवाम के दर्द तकलीफ को सहे, को देखे ना आज जब अगर आज बिजली महंगी हो रही है, जो मुंतखब हो जाते हैं MNMP उनको क्या लगे सर बिजली महंगी है बिजली सस्ती है, उनको तो फ्री हर चीज सरकार दे रही है, जो एक अमीर है उसको भी कोई गर्ज नहीं है कि टमाटर भी अगर आज 250 रुपए किलो बिक रहे हैं तो बेशक उसे कोई परवाह नहीं है, टमाटर 50 रुपए किलो भी उसे कोई परवाह नहीं, गरीब अवाम का आज ये हाल है कि गरीब अवाम बिल्कुल बेयारो मददगार, और आज बिजली के बिल गैस के बिल उसकी वजह से आज हर बंदा जो है परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, और गुजर खान के लिए मैं खास तौर पे अपने अवाम के लिए ये जरूर उनकी आवाज है कि ना गुजर खान में गैस का है, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना कुछ भी है, कोई भी यहाँ पे कोई जो है ना कोई इंसान जो है ना उससे सहूलत उससे मुकम्मल जो है वो नहीं दस्तयाब हो रही है, हर अवाम हर दुकानदार हर बच्चा हर गली उसमें परेशान है, गुजर खान की यहाँ लोड शेडिंग का ये हिसाब है, गैस की लोड शेडिंग दिन में 2-2 घंटे आती है, वो भी 4-4, 5-5 घंटे बाद, बिजली का वो है कि बिजली खराब हो गई तो ठीक करने वाला कोई नहीं है, बिजली के और पर पानी का ये है कि इस टाइम गर्मी है, पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं सर।
1: अमर कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात हमारे समाज नाज़रीन के साथ शेयर की, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
2: जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे अमर कुरैशी साहब जो के ब्यूरो चीफ भी हैं और हेड कर रहे हैं खबरें को, टीवी पे भी ये काम करते हैं, तो हमने जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उन्होंने शेयर की, हमने आपके साथ शेयर की।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धूप और साया साथ साथ चल रहे हैं, सियासत भी साथ साथ चल रही है और ख़बरें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब के पास लेकर चलते हैं कि उनके पास आज क्या है। शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: आपके नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शाह साहब, मौसम और ये सारी चीजें ठंडा गर्म चलता रहता है, सियासत भी चलती रहती है, आज क्या लेकर आए हैं हमारे सामान्य नाज़रीन के लिए?
3: देखिये, इस वक्त मौसम जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काईपूल कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैवानात पर हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब सेहत के लिए बहुत अच्छी है। छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तो कुछ बताया हमें।
3: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा हालात जो है वो सियासी, वो इस वक्त डेनमार्क के अंदर खराब है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान सिर्फ इस बात को ये अजम उठाए हुए हैं कि हमारे, हमारी फैमिली, हमारी बात, हमारा ये जो घूमना है बात छुट्टियों पे, ये बहुत जरूरी है, हम छुट्टियों पे हैं, तो फिर वो सियासतदान ही है, फिर के वो आम वर्कर हैं जो कि छुट्टियों पे चले गए हैं और उनको अवाम और सियासत का कोई उनका ओना बिछोना आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ नहीं है। सियासतदान, जैसे मैंने पहले कहा था नाज़रीन को, कि सियासतदान वैसी है जैसे एक जज होता है हर वक्त ड्यूटी पे, जैसे एक पुलिस वाला होता है हर वक्त ड्यूटी पे, एक फौजी होता है हर वक्त ड्यूटी पे, तो सियासतदान जो होता है

ऐसे है, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप महफिलें लगा रहे हैं, आपके पास इस वक्त बहुत बड़े चांस है। इतने मैंगो फेस्टिवल्स हो रहे हैं कोपनहेगन के अंदर, कोपनहेगन से बाहर हो रहे हैं, आप वहां पे जाके अपने स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को हर जबान के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं, आप लोगों से जाती तौर पे, ये नहीं कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जाएं मैंगो खरीदने या अपना फोटो सेशन कराने के लिए मखसूस लोगों से जफ्फे मारने के लिए आप जाएं, या कहीं क्रिकेट में जाहिर होकर आप ये कहें जी कि इससे लोगों पे बहुत ज्यादा हमारे असरात पैदा हो गए। नहीं, ये गलत चीज है। आपको हर इंसान के साथ बात करनी चाहिए, उनसे उनकी मुश्किलात का पूछना चाहिए, सिर्फ सलाम अलैकुम करना या फोटो का सेशन करने से नहीं, आपको बताना चाहिए लोगों को। तो खसूसी तौर पे जो हमारी वहां पे बहनें बेटियां आई होती हैं लेडीज, आपको उनसे मुखातिब होना चाहिए, उनको ओपनली ये बताना चाहिए कि यहाँ के कानून क्या बने हैं, यहाँ पे क्या सख्ती है। अब कम्यून में जो लोग काम करते हैं उनका फरीजिया क्या है कि वो लोगों को क्या बताए, यहाँ के जो मेडिकल बीमारी पे लोग होते हैं इनको इनको ये इल्म नहीं कि जब डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के देता है तो वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से तो लिखवा लेते हैं लेकिन जाके उसको अपोथिक से बाय नहीं करते। जब तक वो अपोथिक से बाय नहीं करते तो कम्यून को इस बात का पता लग जाता है, गवर्नमेंट को फौरन पता लग जाता है कि इसने डॉक्टर से ये चीजें लिखवाई हैं लेकिन ये चीजें इसने खरीदी नहीं, तो उस पे उसका झूठ सच पकड़ा जाता है। बाद में ये लोगों को कहते हैं जी किसी ने हमारी शिकायत कर दी, देखे जी फलाने ने ये कर दिया। देखे जो मेडिसिन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप ये डॉक्टर को ये बता रहे हैं कि मुझे घुटनों की या मुझे कमर की या मुझे जो बीमारी है उसकी दवाइयात जो है वो जो भी वो लिख के देता है डॉक्टर, वो आपको बाय करनी पड़ेंगी। अगर आप बाय नहीं करते तो वो आपके कम्यून के पेज पे बकायदा रजिस्टर्ड होती है कि इस बंदे ने ये दवाई ली, उसका कितना आपके दवाइयों का सालाना खर्चा कितना, महाना खर्चा कितना, ये वहां पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ये काम हमारा बताने का नहीं, ये काम है जो सियासतदान जो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं जी कि हम वेलफेयर तंजीमें चला रहे हैं, यहाँ पे जो तंजीमात बनी है ये उनका लोगों का काम है कि आके लोगों को अवेयरनेस दे। इसी तरीके से जैसे ये मैंगो फेस्टिवल्स हैं, ये दूसरी चीजें हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो पब्लिक में भी आ रही है, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये लोगों का काम है इसके ऊपर भी लोगों को ये कान धरना चाहिए कि ये चीजें जो हैं ये एक्सप्लोड हो चुकी हैं। कब इसके ऊपर काम होगा मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इल्म में ये बात आई है कि केसेस जो हैं वो रीओपन हो चुके हैं और क्या होने जा रहा है, अल्लाह ताला हमारी कौम को, ये हमारे लिए एक बेहतरीन बेहतरीन चीज है कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लग रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि इनको लीगलाइज तरीके से लेके चले, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। राजा साहब मैं आपको एक ये बात बताऊं कि जहां पे भी फूड फेस्टिवल लगते हैं अब ये फूड फेस्टिवल जो है ये बकायदा आपको हुकूमत यानी कि लोकल कम्यून की इजाजत के बगैर आप नहीं लगा सकते, आप उनको आपको कम्यून को डिटेल्स बतानी पड़ती है हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी फूड होगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सारा कुछ जो है ये कानून जो है ये पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लागू है और उसको जो है वो लेके चलना पड़ेगा। तो ये काफी चीजें हैं जिस जो सुनने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं। अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इतना ज्यादा पेजेस हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। पहले चंद एक होते थे कि व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, एक तो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मसाइल पे आ गया। अब तो आप देखें कि पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बन चुकी हुई है जो डेली रिपोर्ट करते हैं कि पूरे शीलैंड में क्या हो गया, यूलैंड में क्या हो गया, फ्यून में क्या हो गया, कौन कौन से क्राइम कौन कौन से रजिस्टर्ड हुए वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, किसने गाड़ी तेज की, किसने गाड़ी किसका चलान हुआ, वो सब कुछ जो है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए ये सियासतदानों का काम है कि अपने लोगों को एजुकेट करें और अपने लोगों को ये इल्म बताएं कि देखें बेशक हम छुट्टियों पे हैं, बेशक हम छुट्टियों पे हैं, हम काम कर रहे हैं, मुखालफिन जो मर्जी के
इस बात में

0: और आखिर में कम्युनिटी को क्या मशवरा देते हैं?
1: बात यह है जी, वो सब अगर एक मुट्ठी होके चलेंगे ना तो कामयाबी आपके पास है, अगर आप बिखर के जाएंगे तो बस आप कटते जाएंगे। तो मकसद यह है हमारी यहाँ कम्युनिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोगों में बहुत इत्तफाक है, प्यार है, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। बीच में कोई अगर एक आध बंदा ऐसा आ भी जाता है जो कि इस राह में रुकावट बने तो वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि जैसे कि मुजीब साहब है, मियाँ साहब है, शाह साहब है, शौकत साहब है, सब लोग आप है, राजा साहब आप है, आप हमें गाइड करते हैं, आप नई नस्ल को भी गाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा इन कोई भी मसाइल है ना तो वो अम्बेसी के लिए कोई मसला नहीं है कि भाई कोई एक बंदा लाया जाए, या जैसे कि भी मुजीब साहब ने कहा कि नारे में एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो यही चीज यहाँ कोपरेकर में भी हो सकती है। तो लिहाजा मेरी तो राय यही है कि ठीक है अम्बेसी में लोग आते हैं, अब वो उनका शॉर्ट टाइम होता है, 2 साल 3 साल जितना भी पीरियड होता है वो अपना काम करते हैं, लेकिन अगर खुश असलूबी से काम करेंगे, प्यार मोहब्बत से करेंगे तो इनका भी एहतराम रहेगा और अम्बेसी का भी म्यार ऊंचा रहेगा।
0: अगर सब काम हुआ है तो इसीलिए हमारे तालुकात डेनिश गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के और डेनमार्क के बड़े अच्छे हैं। कैटेगरी 5 पे हमने बोला था जीशान को, वो भी काम कर रहा है। तो शाह साहब आखिर में आप अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें, प्रोग्राम को क्लोज भी करें। चौधरी शौकत साहब हमारे साथ हैं, मुजीब साहब हैं, आगा साहब हैं, मियां साहब चले गए। जी शाह साहब,
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे बड़ा मसला जिसका अभी मुजीब कुरैशी साहब ने बात की है, मैं इसे अग्री करता हूँ, लेकिन जब तक हम सारे जो इस रेडियो पे बड़े बैठे हुए हैं और जो बड़े हमें सुन रहे हैं, हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक जगह इकट्ठे होकर इन मुश्किलात का हल देखें, हमने खुद निकालना है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम गेम देंगे तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ डेनमार्क की गवर्नमेंट से ये कहना है कि हमें कैटेगरी 5 से निकालें, हमारे लिए पीजा वीजे की कैसे कैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ के आइन में बकायदा है, आप बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री को टेलीफोन करके जाएं कि मेरी जो इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान में गेला नहीं करती, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो उनसे आप कह सकते हैं कि मैं सियालकोट में जा रहा हूँ, गुजरात में जा रहा हूँ, लाहौर में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद, ये इलाके वो हैं जिसको बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री गोखेंद करती है कि ये वहाँ यहाँ पे कोई खतरा नहीं, तो इन इलाकों का नाम लेके जाते हैं, तो फिर जो है वो इंश्योरेंस वालों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वो आपकी बीमारी के पैसे हर चीज के बंदोबस्त आपको करती है, जो हम राइज फर्सिंग करते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम इकट्ठे होकर इस गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे डेनमार्क की गवर्नमेंट को, तो उस वक्त तक हल नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान अम्बेसी को एक चार्ट जो है, एक चार्ट जो है वो इशू करना होगा कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी डेनिश पासपोर्ट होल्डर है, कितने पाकिस्तानी ड्यूल पासपोर्ट होल्डर है, यहाँ पे कितने जो है वो लोग रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, क्योंकि ड्यूल अगर डेनिश नेशनल पाकिस्तानी है तो वो भी, अगर ड्यूल नेशनल नहीं तो वो वीजा तो पाकिस्तान का लेके जाते हैं। तो ये चीजें जो है, मैंने तो इजी काम किया हुआ है, मैंने तो 10 साल का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था, उम्र मेरा बन चुका है, वो मैंने रखा हुआ है, मुझे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, ना वहां प्रॉपर्टी खरीदे की ना यहाँ। हमारे लोग ही जो है, अगर मुजीब कुरैशी जा रहा है या आप जा रहे हैं एज ए कम्युनिटी के, तो मैं जब एम्बेसडर से मिलूंगा या पाकिस्तान में किसी सियासी से मिलूंगा तो गबियत करना मेरा काम है, तो मैं ये कहूंगा कि छोड़ो जी, इनके पीछे तो 10 बंदे नहीं है, आप रहने दीजिए, हमारे ऊपर ये है, हमारी वहां की शरायत क्या है गवर्नमेंट की, तो ये ड्यूल नेशनल वालों को या इस तरह के कार्ड देने वालों को नुकसान है, तो ये खुद भी हम लोग नहीं बनने देते। तो लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां मुनीर साहब का, चौधरी शौकत साहब का, मुजीब कुरैशी साहब का, आगा साहब का और आपका कि आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो कैटेगरी 5 है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इस पे हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं इन सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इसके ऊपर कम्युनिटी के फायदे के लिए बात करनी चाहिए। जी राजेश साहब, सबको शुक्रिया,
0: आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी शौकत साहब आपका शुक्रिया, आगा साहब, मियां साहब, मुजीब साहब। तो चलते चलते एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान
3: जिंदाबाद,
0: पाक फौज जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद।
4: ये रेडियो

आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाई नाजरीन, 25/7/2026 का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ते का दिन है, मौसम बड़ा खुशगवार है, बादल भी हैं और गर्मी भी है, और उसके साथ साथ सियासी गर्मी भी है जो कश्मीर से हमें आती है। और उसके अलावा सामने नाज़रीन, आपको पता है कि हम कोशिश करते रहते हैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से, हमारे थिंक टैंक बात करते रहते हैं, और काफ़ी सालों से हम जो लोकल हमारे मसाइल होते हैं, कम्युनिटी के मसाइल होते हैं, लोकल जो पॉलिटिक्स होती है हमारे जो कोपेनहेगन कम्यून में या फ्रेडरिक्सबर्ग में या आगे दूसरी कम्यून में भी जो हमारे साथ रिलेटेड होते हैं मसाइल, उस पर हम लोकल बातचीत करते रहते हैं। सब नाज़रीन, टैक्सी सेल्सकेप जो है एक बहुत बड़ा कारोबारी, इसे अदारा भी कह सकते हैं, कारोबारी कंपनियां भी कह सकते हैं, जो कुछ मर्जी आप इसका नाम दें, लेकिन टैक्स के बगैर जो है वो आवाम का गुजारा भी नहीं है। ऑफिस में बुक्स होती हैं, एयरपोर्ट पर बुक होती हैं, और काफ़ी सालों से मामला चलते रहते हैं। अब कारोबारी लिहाज से एक नई ब्रांच जो है वो आ गई है, उन्होंने 600 गाड़ियाँ भी लॉन्च कर दी हैं, और जो है वो ड्राइवर भी रख रही है, और तनख्वाहें भी मुकर्रर हो गई हैं। तो समझ नाज़रीन, काम की मंडी में जब लोग आते हैं, नए लोग आएंगे, तो डेफिनेट जो है सहूलियात भी मिलेंगी। तो हमने कहा चूँकि हमारे बहुत सारे लिसनर जो हैं वो इस ब्रांच से तल्लक रखते हैं, और इस ब्रांच में लोग ये ना कहें अनपढ़ हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, इसमें इंजीनियर्स भी हैं, इसमें और जो PhD वाले लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब आपको पक्की तनख्वाह मिलेगी तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। हमें पता चला है कि कोई 29-30 हज़ार के करीब जो है तनख्वाह मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमने तकलीफ़ दी है सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब से। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, 18-19 डिग्री है, और बादल भी आते हैं और धूप भी निकलती है, और मौसम जो है वो बिल्कुल मरी जैसा मौसम है। हम ये समझे कि हम गर्मियों की छुट्टी में मरी में आए हुए हैं, और यहाँ की मजेदार जो हवा है उसे मजे ले रहे हैं, और ये हमारे लिए हमारी कुछ किस्मती है, खसूसी तौर पे इस टाइम को देखें जहाँ तेल बहुत महंगा हो चुका है, 17 करोड़ पर लीटर हो चुका है, डीजल जो है वो 17 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तो इससे जो हमारी वार्म की जो या कोल्ड की जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम घरों में AC वगैरह लगाते थे, इलेक्ट्रिक तो बहुत महंगी हो गई है। ये तो अब जब हमें नए बिल आएंगे तो उसके ऊपर जो लोगों को पता लगेगा कि भाई हमने जो पंखे लगाए थे या AC लगाई थी, तो खुदा की तरफ से ये हमें कोई हमारे पे रहमत है कि मौसम सर्द है और हम लोग इस गर्मियों में इतना AC वगैरह या दूसरी जगह पंखे वगैरह नहीं लगा रहे, तो ये हमारी बचत है। और चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और बाज चीजों की प्राइस जो है वो बहुत ही, खाने पीने की कम है, लेकिन कुछ चीजों की प्राइस इतनी हाई हो गई है कि लोगों की दस्तर से वो दूर है। तो जितना भी आप नजर रखें, ये ना देखें कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें ये वार्निंग दी हुई है कि आप अपने घर में 3 दिन का खाना, 3 दिन का पानी जो है इसको स्टोर करके रखें कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है या कोई ऐसा इंटरनेट सिस्टम बंद हो जाता है तो आपके पास कुछ कैश भी होना चाहिए ताकि आप जो ग्रोसरी वगैरह खरीदे या कोई चीज खरीदे जाते हैं तो वो आपके पास कैश हो। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या इंटरनेट बंद हो जाता है तो वो कंप्यूटर वगैरह तो काम नहीं करेंगे, किल वगैरह काम नहीं करेगी, लिहाजा आप कैश देके तो आप अपनी चीजें खरीद सकते हैं। तो राजा साहब, हमें हुकूमत की तरफ ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना और अपने बच्चों का सोचना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सोचना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हुकूमत के जो इस वक्त एडवाइजर जो हमें वो हमें कह रहे हैं कि जो हमें वो एक खबरदार एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, हमें उस पे नजर जरूर रखनी चाहिए और उस पे अमल भी करना चाहिए। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने अच्छा किया बता दिया। शाह साहब चूंकि आपका इस ब्रांच से तल्लक भी है, हमारे लिसनर भी काफ़ी तादाद में हैं, और ये जो नई टैक्सी नई कंपनी जो कारोबारी कंपनी आई है और जिसके लिए अब खबरें हैं कि 600 टैक्सीज भी उन्होंने ख़रीद ली हैं और जो उन्होंने मुलाजम भी रख लिए हैं, जो दूसरे हमारे लिसनर या यहाँ लोग जो काम करते हैं मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के, इसमें हमारी अपनी जो है वो कम्यूनिटी अच्छी खासी तादाद में शामिल है, तो शाह साहब नए जॉब आ गए, नई तनख्वाहें आ गई है, नया सिस्टम आ गया, जरा हमारे नाजरीन को हमारे सामान को बताएं तो सही।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि 2017 से हम फाइट कर रहे थे इस रेडियो पे, हर रोज हर हफ्ते हमारा यही प्रोग्राम होता था कि खुदारा बाहर निकले और प्रोटेस्ट करें कि भाई जो हमारा पुराना टैक्सी कानून है उसको बचा लें, और उबर वगैरह अगर आती है तो ये जैसे इंग्लैंड में ब्लैक कैब चलती है और जर्मनी में जो बड़ी लोकल कंपनी है वो चलती है, लेकिन उसके साथ उबर भी चल रही है और दूसरी कंपनियां भी चल रही है। इसी तरीके से हम अपना पुराना वकार जो है, हमारे जो पुरानी कंपनी है जो कानून है उसको हम बचा लें। लेकिन यहाँ पे लोगों ने लालच की, हमारे अपने लोगों ने जो सबसे ज्यादा तादाद में फॉरनर थे, इन्होंने कहा कि ये तो पैसा कमाने का एक उम्दा जरिया बन गया, हम जितनी ज्यादा टैक्सी लेंगे जितने ज्यादा नंबर लेंगे इसको आगे बेचेंगे। लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि ये आपके लिए खतरा है, आप इस तरह की सोच मत रखे आए। इस हुकूमत ने 2017 से लेके 2023-31 दिसंबर तक ये मार्जिन दिया कि अगर आपको ये लॉ फोर्स ने जो हमने बनाई है उबर की, इसको इस कानून को अगर आप नापसंदीदा समझते हैं और ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप इस पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने इसको मजाक समझा और इसको दौलत का जरिया समझा। तो आज आप ये देखें कि आज ये जो नई कंपनी यहाँ पे आई है जिसने अब FDM और इसके साथ गवर्नमेंट और इसके साथ BT और बकायदा TV2 और दूसरों ने जो एक्सबिलर और दूसरे अखबारों ने उसकी तस्वीरें निशर कर दी है कि वो इस जुमे को 30 जुलाई से ये कंप्लीटली ऑन रोड हो जाएगी। 590 जो उनकी अपना गाड़ियां हैं वो एज ए टैक्सी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और अवधा हॉलमन में खड़ी हैं और कुछ ऑन रोड भी आ रही हैं, और ये जो है ये ग्रीन टैक्सी जो है ये वियतनाम की ये सबसे सस्ती टैक्सी होगी। इसको इसके ड्राइवरों को ये लालच नहीं कि क्या हम कमा रहे हैं, उनको ये बस होगा कि जो उनकी सेल्सकेप जो है उनको टूर देगी वो टूर उठाएंगे, उनको उनकी सरदर्दी खत्म है। उन्होंने 7-7.5 कैंडे जो काम करना है उसकी उनको 29,000 यानी 29,000 करोड़ जो है वो फिक्स तनखा प्लस बोनस मिलेगा। ये आज के माहौल के मुताबिक ये खुश आंदा है, लेकिन ये डेनमार्क के आइन के और डेनमार्क के कानून के सख्त खिलाफ वर्दी है। क्योंकि चले ठीक है जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें 29,000 तनखा और बोनस जो मिलाकर अगर ये 32-33-40-34-35,000 तक बंदे की तनखा निकल आती है तो ये एक खुशाइंदा बात है। लेकिन जो वॉनमैन चल रहे हैं जिनके पास वॉनमैन तो नहीं, जो वो कैब ऑनर आप उनको कह सकते हैं, वो वॉनमैनशिप तो वो तो व्हीलिंग वाली तो खत्म हो चुकी है। अब ये जब 590 गाड़ी जुमे को सड़क पे आएगी तो ऑलरेडी यहाँ पे 3500 से लेके 4000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन में टैक्सी चल रही है। तो इससे आप ये देख लें कि कितना बड़ा झटका लगेगा, अर्थक्वेक आएगी और वो कंपनी जो है वो अपने ग्राहकों को सस्ते से सस्ता और जो है रूट वो मुहैया करेगी। अभी मैं आज पढ़ रहा था एक डैनिश ने जिसने 21 साल टैक्सी चलाई और उसने आज आखिरी दफा टैक्सी जो है वो कल खड़ी कर दी और उसने कहा कि आज के बाद मैं दूसरी जॉब करूंगा और मैं ये मेरा टैक्सी से जो 21 साल मेरा इसके साथ वास्ता रहा वो अब नहीं रहेगा क्योंकि ये टैक्सी नहीं रही। और इसी तरह एक बंदे ने ये क्लेम किया है कि उसने रॉसकिल्ड से लेके लुफ्तावन यानी एयरपोर्ट तक, रॉसकिल्ड से एयरपोर्ट तक 500 कुछ करोड़ में उसने फर्स्ट प्राइस पे ये टूर उठाया है। अब आप ये देखें कि एक वॉनमैन जो है, एक ये जो नई सेल्स के भाई है, इसमें अगर वो इतना टूर, इतना 500 का टूर है तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सेहत पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि उसको फिक्स तनख्वाह मिल रही है, वो 200 से लेके जाए, 400 से लेके जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, जो लोग अपनी टैक्सी लेके चला रहे हैं, उनके अखराजात जो है इस मुकाबले में वो जीरो हो जाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको याद आएगा कि कभी रेडियो आपकी आवाज पे तौकीर शाह बैठा होता था और बात करता था। ये चीजें जो है हम इनको पहले से बताते रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी जो इनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये अब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि ये अपनी जो सेल्स के है उनके साथ इनकी बैनिंग है, ये उनके साथ बाउंड हो चुके हैं, ये उनके साथ इनका मुआदा है कि ये उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे और नए कानून को एक्सेप्ट करेंगे। तो नए कानून के तहत राजा साहब ये दिल चाहे जब दिल चाहे पीछे से कंपनी इनका नंबर बंद कर दे और इनको कहे कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे लिहाजा हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं, ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये अपनी गाड़ी ले घर जाए, उसकी लीजिंग देनी है, उसके पैसे देने हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें से ये निकले। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे से इस प्रॉब्लम में से, इस नए कानून से निकला था। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे अपनी सेल्स के बंद करनी पड़ी, तो मुझे 1,00,000 जो है वो पास से देना पड़ा सेल्स के को, फिर गांव स्वीटू को, और प्लस मुझे जो अपना कोर्स होने से और दूसरी चीजों से होने से बचने के लिए मुझे 62,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे मुझे गाड़ी का लॉस हुआ। तो ये जो 162,000 करोड़ मुझे लॉस हुआ, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आपको टैक्स वापस करेगा, ना आपकी कोई मदद होगी, ना कोई चीज होगी। आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ियां डाली हुई है, खुदारा होश के नाखन लें। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप हड़ताल करें, आप कुछ करें, क्योंकि आपका नुकसान आपका होगा और आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम सिर्फ ये राय देते हैं कि अभी भी आप मुतहिद हो जाएं, अभी भी आप सिग्नेचर्स लें और आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से इससे जान छुड़ाते हैं। अब ये 590 जो टैक्सी जो फ्राइडे से सड़क पे आ रही है, इस जुमे से जो आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको आप देखेंगे कि आपके नाक के सामने से उबर और ये ग्रीन टैक्सी जो है ये 2-3 मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ जाएगी और ये आपके नाक के सामने से टूर उठा के लेके जा रही है और आप खड़े हैं। आप वो जो इतनी इतनी महंगी लीजिंग गाड़ियां ली हैं, इतनी इतनी महंगी इंश्योरेंस है, वो अखराजात आप कैसे देंगे? क्या आपके लिए कोई सर्वाइवल है? इसका हल बेशक आप फीमत हाल में है या आप किसी भी सेल्स के में है, इसका हल जो है ये अब क्रिसमस से पहले सबको नजर आ जाएगा। इसका हल सिर्फ ये है कि आप अपने कंपनियों से बात करें कि वो अब इकट्ठे हो और जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस कानून को जानते हैं कि इसको किस तरह डिमोलिश करना है, इसको किस तरह खत्म करना है, इस कानून के ऊपर बात किस तरह करनी है, सियासतदानों से बात किस तरह करनी है, पार्लियामेंटेरियन से बात किस तरह करनी है, ये जो जब तक आप आईन और जो कानून बना हुआ है ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके दरमियान जब आप इन एक्सपर्टीज को लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अभी भी आसानी है कि आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राजा साहब, मैं लोगों को बताता रहूं कि 2000 22 और 2023 में जो थी यहाँ से कम इनकम जो थी डेनमार्क के अंदर काम करने वालों की उनका बनता था 30,990 डेनिश क्राउन, यानी कि थालबन थूजन नहीं होना हेल्फिंग्स कोरोना। और उनका जो सालाना जो इनकम बनती थी वो बनती थी पर पर्सन बनती थी डेनमार्क के अंदर 3,71,900 क्राउन, यानी नियरली 3,000 कोरोना। तो 25-26 में इन्होंने वो बढ़ाकर कर दी 4,000 कोरोना। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को बताते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और जो 25-26 में इन्होंने 4,000 किया तो इसके पर मंथ ये महीने किया तो इन्होंने कम से कम जो इनके बंदे कमाते हैं तो उसके अंदर जो है ये एक महीना काम करने वाले के लिए 5,64,000 कम से कम जो है वो इसकी सालाना इनकम होती थी। लेकिन अब अगर आप 29,000 या 30,000 पे काम
1: जो
2: करेंगे,
1: 30 जुलाई डेनमार्क में बाकायदा सर्विस जो है होने जा रही है, इसका आगाज कोपेनहेगन से होगा। पहले मरहले में तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये तकरीबन गाड़ियां इस नाम से होंगी, ज़्यादातर जो है टैक्सियां हैं विनफास्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें मुख्तलिफ मॉडल भी शामिल हो सकते हैं, VFE 34, VF5, दीगर जदीद इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी। शाह साहब, ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? अगर आप ग्रीन GSM के साथ काम करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको ये चीज़ें दरकार होती हैं, डेनिश टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस, साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड, CPR नंबर, डेनमार्क में काम करने की कानूनी इजाज़त, बुनियादी डेनिश या अंग्रेजी जबान की सलाहियत, कमाई कितनी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है आत्मी तनख्वाह कंपनी कितने देती है, लेकिन डेनमार्क में टैक्सी ड्राइवर अमूमन बुनियादी तनख्वाह के साथ बोनस या कमीशन की बुनियाद पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी होने की वजह से ईंधन के अखराजात भी कम होते हैं। तनख्वाह और कमीशन की तफसीलात कंपनी की जानिब से मुलाजमत के वक्त दी जाती है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात, मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग, 100 इलेक्ट्रिक और माहौल दुरुस्त सफ़र, 100% मतलब है 100% टैक्सी नहीं, 100% माहौल, डिजिटल अदायगी, जदीद और नई गाड़ियाँ। शाह साहब, अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, GSM जो है ग्रीन GSM है, तो शाह साहब बुनियादी तनख्वाह एक बंदे की या एक ड्राइवर की सहूलियात के साथ कितनी हो सकती है तकरीबन?
2: देखिए जी, जो आपने बात की आपने बिल्कुल सही बात की है। ये ग्रीन GMS आने के बाद और यहाँ के जो हालात हैं इससे इसका निचोड़ एक ही निकला है कि यहाँ पे अब पानी गंदला हो चुका है। ये इसलिए इन्होंने पानी गंदला किया है कि इस कानून के तहत जो है वो लोग अब मुलाजमत करेंगे और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको मिलेंगी और लोगों को सर्विस जो दी जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉरनर जो थे वो टैक्सी चला रहे थे और कैब ऑनर बने हुए थे और उनके पास उनकी जो इनकम सी जो वो कभी सही तौर पे यहाँ आगे पीछे कुछ लोग सही शो करते थे, कुछ लोग आगे पीछे, क्योंकि यहाँ आपको ये बताता चलो कि पिछला जो लॉ गिवनिंग था जो टाक्सा नेमन का कानून था उसके अंदर वोनमैन को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके अंदर यह था कि वोनमैन जो था जब उसको बबीलिंग दी जाती थी तो वो बबीलिंग जो है ना पुलिस ले सकती थी ना टैक्स वाले ले सकते थे, उसके लिए उसको अदालत में लेके जाना पड़ता था और भविष्य करना सबूत देना पड़ता था कि ये इस आदमी ने ये घपला किया, और ये अदालत में होता था कि क्या उस बंदे के साथ वो कोई जुर्माना वगैरह करके उसको छोड़ दिया जाए या उसको कोई वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए या उसे वो बबीलिंग वापस ले लिया जाए किस हद तक, ये सारा कुछ अदालतों पर डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है ये कानून बदल के इन्होंने मिनिस्ट्री को दे दिया। मिनिस्ट्री ने क्या किया कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको ये अख्तियारात दे दिए। अब आप ये देखें कि एक बड़ी कंपनी बाहर से जितनी भी कंपनियां आ रही है सब बाहर की हैं, डेनमार्क की कोई कंपनी नहीं है, सब बाहर की आ रही है। और अब इनका मुकाबला जो था आखिर एक संस्केप रह गया जो कोपेनहेगन की कंपनी है, लेकिन अब उसका भी कबाड़ा हो जाएगा और वो भी जो है बहुत जल्द जो है वो हाथ पांव उनके सुन हो जाएंगे और वो छोड़कर इसको मैं तो ये समझता हूँ कि वो ड्राइवर जो है अभी मेरी کل شام کو تین چار ڈرائیوروں سے بات ہو رہی تھی
1: صاحب, میری انفارمیشن کے مطابق دین ٹیکسی کے پاس بھی 600 الیکٹرک گاڑیاں ہیں, کیا بات صحیح ہے؟
2: جی بالکل, سب کے پاس ہیں گاڑیاں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ یہ جو ڈرائیوروں کی اب کمی آ گئی ہے, ڈرائیور نہیں مل رہے, کیونکہ ڈرائیور چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی ہو, ڈرائیور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکورٹی ہو کہ اگر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کے پیسے ملے, ہمیں پہلے دن سے بیماری کے پیسے ملے, ہم یہ نہیں کہ وومن کہ جی تم نہیں آئے تو میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا, یہ نہیں کر سکتا. یہ جو نئی کمپنی کی جو شرائط ہے یہ بہت ہی خوش آندہ شرائط ہے ڈرائیورز کے لیے, لیکن اس کے اندر لیس پے ہے طرح جو ہے یہ ڈینش آئین کے خلاف ہے, اس پہ میں بالکل پروٹیسٹ کروں گا. لیکن جو ان کا اصول ہے باقی طریقے جو ہیں ان کے کہ ہم آپ کو دیں گے کیا نام ہے فائدہ دیں گے, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ انسٹ ہیں, آپ چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں, آپ کو چھٹیوں پہ وتھ پے ملے گی, یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا دوسری کمپنیاں جو ہیں یا وہ بندے جو کہتے ہیں جی کہ ہم ابھی تک وان مین ہیں, کیا وہ اپنی اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے؟ کیا جو عوام ہے گاہک جس کو ہم کہتے ہیں وہ سستی ٹیکسی اور اچھی ٹیکسی اور ایک ایسی, بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کل بھی پڑھ رہا تھا کہ بے شمار لوگوں نے یہ ڈینشوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فارنرز کی ٹیکسی تھی, یہ جو فارنر انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہے فارنر, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ریپ ہوتے تھے, یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, یہ اب یہ چیز ختم ہو جائے گی, اب ہم ایسی ٹیکسی میں بیٹھیں گے اور ایسی ٹیکسی ہم چاہتے ہیں ڈینمارک کے اندر کہ جو کمپنیاں چلائیں اور کمپنی جو ہے وہ جواب دہ ہوگی. تو پہلے تو دوسرا سسٹم چل رہا تھا تو انہوں نے سارا سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا ہے. تو اب راجہ صاحب جو باتیں ہم نے وارننگ دی تھی, ایڈوائسر دی تھی ان لوگوں کو کہ خدا را مطلب پرست نہ بنے, سامنے آئیں اور اپنے جو ہے اس وارمن شپ کو اس کو بچائیں, تو اب یہ جھٹکا جو ہے جمعے کو لگنے جا رہا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا ڈی ایس بی اور بڑی بڑی جو کمپنی ہیں گورنمنٹ کی, یہ تو اب ایسی سستی گاڑیاں لیں گے جس کے اندر یونیفارم پہنے ہوئے ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں, انس والی ڈرائیور بیٹھے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے پوری تنہا لینی ہے, ان کو اس بات کا نہیں پرواہ کہ یہ 100 کروڑے کا ٹور ہے یا یہ 500 کروڑ کا یا 1000 کروڑے کا ٹور, اس کا ان سے لینے دینا کوئی نہیں, وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے جیسے وہ فرموں میں کرتے تھے فیکٹریوں میں کرتے تھے, 7.5 گھنٹے کام کیا اور اس کے بعد خدا حافظ گاڑی کھڑی کی اور اپنے گھر چلے گئے, اور یہ ایک بہت اچھی خوشاندہ بات ہے اور ان کے لیے, لیکن یہ ان کے لیے جو جنہوں نے مہنگی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں.
1: اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلے پہلے لوگوں نے گاڑیاں لی, بڑی بڑی گاڑیاں لی, بڑی مہنگی گاڑیاں لی, کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو یہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا موجود نہیں ہے. شاہ صاحب اگر ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے 30,000 کے قریب یا 40,000 ڈینش کرون کے قریب ہوتی ہے اور شفٹوں میں کام ہوگا, کمیشن بھی اوور ٹائم بھی ہو سکتا ہے, رات ویکینڈ تعطیل چھٹیوں میں بھی کام کرنے کی جو اضافی ادائیگی مل سکتی ہے, شاہ صاحب اگر کمپنی اجتماعی معاہدے یعنی کے تحت جو ہے نا وہ ملازمین رکھتی ہیں تو عام طور پر تنخواہ کے ساتھ پینشن, تنخواہ کے ساتھ چھٹیاں, بیماری کی صورت میں تنخواہ, تربیت یعنی ٹریننگ, جدید الیکٹرک ٹیکسی کی ٹریننگ, کمپنیوں کی طرف سے گاڑی کی دیکھ بھال اور انشورنس جیسی سہولیات بھی شامل ہو سکتی ہیں. شاہ صاحب آپ یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یا کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کوئی بھی اس کمپنی میں گیا تو آپ کی انفارمیشن میں ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی یا ہمارے غیر ملکی بھائی یا جو ہمارے لسنر ہیں یہ کتنے لوگ جو ہے اس برانچ میں جا چکے ہیں اور اس کا معاہدہ کتنا ہوگا, یہ نہ کہ صبح نکال دیا جائے آج چھوڑ کے جاتے ہیں دوسری کمپنی میں پھر ان کے لیے واپسی کا راستہ کیا ہوگا؟
2: میں کہہ رہا ہوں جی کہ بہت زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس کمپنی میں چلے گئے ہیں, ان کو پہلی فرصت میں 3,000 ڈرائیور چاہیے تھے اور میرا خیال میں کہ ان کا جو ہے وہ کافی, کیونکہ اگر وہ 590 ٹیکسیاں نکالتے ہیں تو ان کو کم از کم 16-1700 ड्राइवर जो होते दिन रात के लिए उनको चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमने वीकेंड में भी काम करना है, नहीं, आपने 5-6 दिन जो करना है, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जो वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है और फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए अच्छा है, फिर उनको हर किस्म की छुट्टी है। सबसे बड़ी छुट्टी उनके लिए यह है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको ये मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई है, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेर ये आएगी उसके अंदर, फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा, मैं खुद वॉनमैन रहा हूँ, मैं खुद सेल्सकेप चलाता रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो सज्जे खब्बे की मारते हैं ना वो मैं, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार, तो उन्होंने कहा शाहजी सर जापाल आपके लिए अच्छी, और इवन टर्किश जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तनखा मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियो टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट है उससे, अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तनखा मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है, और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया है, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर हैं, और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये कोई पता लगा आपको?
2: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं और फोर्थ पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और आप कितने घंटे जो है, अब क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए, या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ ग्रूम ब्लॉक जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डीलक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे, और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाएं, अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है वो, फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनर्स या जो पेंशनर हैं इनको जो बोली यूथ से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है, ये वो खत्म हो जाएगा इससे। लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड में,
1: ये तो नेचुरली बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले, आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर, आपके जो छिले गए इस पर कोई फर्क ना पड़े?
2: देखिए अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कोई नहीं देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ, और दूसरा ये है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं इसके मुताबिक ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया है, ये देख रहे हैं, इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोड़ जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्राउंड क्रॉप है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टिया कर जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं घर में साथ रह रहे हैं, उसकी हाउस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डेनिशों के लिए ये है कि डेनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवेयर फसाए, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो लादा लादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था, वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पर डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो डेनिश तलाक ले लेते हैं, लेकिन लोग मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने संपोन में अपने लोगों के, ये कहते हैं हमारा ये जुर्म है। और इसमें वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे हैं करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: शाह साहब इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी 600 के करीब आ जाएंगी तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? कोपेनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना
2: ही जी। ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से, मैं प्रीवेलिंग नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो तो वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ी आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा रहे कि जब 3500 से लेके 5000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो

0: इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ? एक घंटे में 100 करोड़, इससे अच्छा है वो जाके तो
1: लेकिन शाह साहब ये एक बहुत बड़ा खेल होता है, कारोबारी खेल इसे कह लें, जाहिर है रोजगार भी लोगों को मिलता है, तो शाह साहब इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी, रोड टैक्स इन्वॉल्व हो गया, अब तो फिक्स चीज़ें आ गई हैं, इंश्योरेंस भी फिक्स हो गई है, हर कंपनी इतनी कंपनियां आ गई इंश्योरेंस वाली कि वो गिनी नहीं जाती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जहाँ सहूलियात हैं उस तरफ जाना चाहते हैं, तो शाह साहब आप कोई मुस्तकिल मिजाजी वाली बात नज़र आती है?
0: जी, ये जब तक मुश्किल मिजाजी वाली बात तो उस वक्त होगी जब हमारे जो काउंसलर हजरात हैं ये इस मसाइल को संजीदगी से देखें और वो उठाएं इसको कम्यूनों के अंदर, के एग्जाम्पल ईसा है में कितने टैक्सी वोमैन या टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, टास्रो में कितने हैं, एल्बर्सो में कितने हैं, कोपनहेगन में कितने हैं, तो उनके लिए मसला बन जाएगा कि भाई लोग कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये यकीन से ये बात कहता हूं कि ये जो नई कंपनी आई है, अभी तक ये कानून जरूर था कि आप 33,000 से लेके 35,000 तक फास्ट प्रीस पे आप ड्राइवर को रख सकते हैं, फिर उनको उनकी इंश्योरेंस है, हर चीज उनको आपने देनी है, लेकिन 39,000 जो है ये, और फिर उसको हर किस्म की सहूलत देनी ड्राइवर को, ये वोमैन के वोमैनशिप को खत्म कर देगी। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एग्जांपल अब बॉल्ट है यहाँ पे वो उबर है, तो ये क्या करेंगी? ये भी इसी तरीके से जब लोग अपने नंबर वापस करना शुरू कर देंगे, तंग आ जाएंगे, उनकी गाड़ियां बिक नहीं सकती तो वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उनको नुकसानात होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि कंपनियां उनसे हर एक चीज ले लेंगी सस्ते दामों, और फिर उनके अंदर अपने ड्राइवर जो है, जिस तरह इन्होंने एनसेट किया, इन्होंने तनखादार बंदे मुलाजिम रखे हैं, वो भी उनको कहेंगे कि अब आप हमारे पास काम करें, आप हमारे लिए पैसा कमाएं और हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करना है। तो अब ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सामने आ गई है, तो राजा साहब इसमें जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े
1: मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे काम होंगे लेन देन वाले,
0: बिल्कुल जी, ये सब कुछ आप अब अखबारें भरी हुई हैं कि जो लोग फेरिये पे गए हैं वो कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश पैसा इस्तेमाल कर रहे, इनको सारे किस्म की आप इंफॉर्मेशन।
1: शाह साहब देखे ना, इस पर नजर रखनी चाहिए, बार बार आप काउंसलर का जिक्र करते हैं, डेफिनेट इसके लिए काउंसलर ने अपनी अपनी कम्यूनों में पहले सफबंदी करनी थी, पार्किंग ये वो दूसरा तीसरा, शाह साहब हर पार्किंग अब पैसे से होती है, फ्री पार्किंग तो कहीं भी आपको मिलती नहीं कि आप करें, कुछ जगहों पर है 1.5 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, इतनी ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम इतनी पार्किंग आपको फ्री मिलती है, दूर दराज इलाकों में रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल्ला है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ना कहीं।
0: देखिए जी, पार्किंग का पहले सबसे पहले ये है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये मैं गवर्नमेंट को और काउंसलर्स को कह रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका प्राइवेट विला है तो उसके अंदर तो आपकी पार्किंग जो है वो गratis है, क्योंकि वो तो आपके अपनी है, उसके राइट्स दूसरे हैं, और जो अपार्टमेंट ले रहा है अगर वो कहीं सड़क पे या किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है तो वहां पे क्या जी उसको जुर्माना लग जाता है, अगर उसका कोई गेस्ट आ जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे फ्री है गेस्ट पार्किंग है या क्या, वहां पे वो जुर्माना लगा के चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये जो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दी हो रही है।
1: शाह साहब और भी हमें शिकायत मिलती है, हमसे लोग बात करते हैं सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमसे बात करते हैं, शाह साहब जब आप शहर में घूमते हैं, एक दिन हमने भी सर्वे किया, आपको पता है कि ये डील चीज वीजा कारोबारी गाड़ियां उनकी पार्किंग होती है ये हर वक्त आपको खाली मिलती है, रात को बाहर निकले आपके घरों के आगे पीछे जहाँ इलेक्ट्रिक पार्किंग है ये पार्किंग हमेशा खाली पड़ी होती है, लेकिन आप वही का जो काम वाली गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहाँ खड़ी नहीं कर सकते, वो भी काम वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं वो अलहदा सिस्टम बना हुआ है। तो शाह साहब एक आपने रोड टैक्स भी देना है, उसके बाद आपने पार्किंग भी करनी है, फिर आपने वो पीस की जो लिखा होता है पार्किंग के पैसे भी डालने हैं, तो शाह साहब इसकी वजात जो आप सिटी काउंसलर जो बैठे होते हैं कम्यूनों में सबसे जिम्मेदार लोग तो ये होते हैं, पावर तो इनके पास होती है कमेटियों में, तो शाह साहब ये मुझे एक बड़ा मनज़म जो है वो मनज़म जो कहते हैं वो स्पिल नज़र आती है, गेम नज़र आती है, स्कक नज़र आता है, आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं।

0: हैं वहां पे, ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नाजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पे कोपेनहेगन वेस्ट राइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती है, ये तो 90 से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं। तो ये हमें क्या दे रहे हैं? मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पर खुश हूँ। तो उसने हंस के कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना उससे 1,000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन के ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूं तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूँ कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उससे मुझे ये वार्निंग दे दी थी, और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने
1: शाह
0: बात
1: साहब
0: करनी है
1: बात है
0: ना।
1: शाह साहब, पहले पार्किंग की तरफ आते हैं। ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है? आप देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं आगे उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दे अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अच्छा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें जो हैं अगर जाती हैं। मैंने खुद अपने घर में अपने बच्चों की बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा है सिस्टम, अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ ये कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी टेररिज्म
1: शाह साहब, ये
0: सिस्टम
1: तो
0: हो
1: बातें
0: जाता है।
1: चलती रहेंगी लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरियत
0: जमहूरी
1: फैसला
0: मुल्क
1: करती
0: खत्म हो
1: है।
0: गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया। ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8-8 हज़ार करोड़ जो है वो तो सिर्फ हूसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है कोपनहेगन में मेरे पास इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, आपने भी कुछ बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि एक एक लाइब्रेरी के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 3500 से लेके 4000 और जो महंगा एरिया वहां पे 4000 से भी ऊपर जो है एक पार्किंग प्लस का वो ले रहे हैं। अगर एक घर में दो गाड़ी है तो वो दो पार्किंग प्लस अगर ले रहे हैं तो वो तो 5-6 हजार को उधर दे रहे हैं। तो ये
1: अगर वो एक सवाल पैदा होता है शाह साहब, आप पार्किंग में खड़े होते हैं, आपको पार्किंग में क्या सहूलियत मिलती है? लाइसेंस आपने लिया उसके बावजूद आप पैसे देते हैं
0: जी, तो ये नहीं होना चाहिए। पार्किंग फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्किंग फ्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो आपकी जो आइटम है जिसके अंदर आपने लाए किया हुआ है या आपने घर फ्लैट खरीदा हुआ है, एक तो वो डबल कमाई कर रहे हैं
1: और उसके साथ बात की तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ शाह साहब। एक बंदा एक घर में, चार बंदे फलक हैं, दो बंदे फलक हैं, एक घर में चार गाड़ियां उसी एड्रेस पे या तीन गाड़ियां, तो शाह साहब पार्किंग का प्रॉब्लम तो आएगा, हमें भी तो सोचना चाहिए।
0: नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ियों को बजाय लीजिंग करने के, गाड़ियों को ये करने के, गाड़ियों की प्राइसिंग नीचे करके गाड़ियों को बाय करने के लिए अगर रखे तो किसी आदमी के पास 40-50 हजार करोड़ इतना कैश नहीं होता कि वो जाके ब्रांड न्यू गाड़ी जो है उसकी उड़बचनिंग जो कर सके। अब लीजिंग का जो मसला है कि आप 40-50 हजार करोड़ लीज कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसकी 3-4 हजार करोड़ जो है वो मंथली आप देते हैं, और बाद लीजिंग इतनी सस्ती है कि आप उसके अंदर 20 हजार करोड़ देते हैं तो आप गाड़ी लीज कर लेते हैं, तो लोग जो है वो उसको लीजिंग गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पार्किंग जो है लोग देखते हैं कि किस जगह पे पार्किंग जो है वो फ्री है, तो वो फ्री पार्किंग वाली स्ट्रीट पे जाके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जो पेमेंट करते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं आप उनके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि अब तो आपके फ्लैट का नंबर लिखा होता है उस पार्किंग में। मैं अगले दिन बेलारूस गया था तो वहां मैंने एक टर्किश के पास जाना था, तो वहां पे वो बादशाह नीचे आया, उसने कहा कि गर्दज तुम यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, तुम्हें बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हर लाइली के लिए एक एक पार्किंग प्लेस है और वो उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं तो फौरन जुर्माना लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतने दूर से मैं चल के पैदल अब आऊंगा, तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने किए,
1: आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ज़हनी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, अब ये कम्यून के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ये इनकी वजह से है, ये इनकी नेकलेस है, ये लोग इस चीजों पे बात नहीं करते कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा फोटो सेशन हो रहा है, हम कहाँ अपनी तस्वीर लगाएं, हमें कौन बुला रहा है, किस पार्टी में हमें नहीं बुलाया गया, किस पार्टी में हम जाएंगे, किस शादी ब्याह, बस ये इनका चीज रह गई है। ये मैं उर्फे हमें ये कहूंगा
1: तो साहब इसका मतलब है कि वोटर को जो वोट देने वाला उसको अपनी पावर का पता ही नहीं है,
0: पता ही नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है, प्योर पाकिस्तानी, ये डेनिश सियासतदान नहीं है, क्योंकि डेनिश सियासतदान जो है वो किस कहीं भी तख्ती नहीं लगाता कि ये मैंने ये काम करवाया इस पे मेरा नाम आया, नहीं, वो कहता है ये कम्यून ने कराया, गवर्नमेंट ने कराया और जो वहां का बॉम मिनिस्टर होता है उसका भी नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डेनिश जो है वो जब किसी भी असेंबली में हो, बेशक वो कम्यून की असेंबली में बैठे हो या पार्लियामेंट में, तो वो तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो जब आप सारा दिन अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप थके हुए जाएंगे, फिर आपने अपनी बीवी बच्चों को संभालना, फिर आपने किसी शादी ब्याह पे जाना, तो आप वो कहते हैं जी आपने
1: क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब देखें ना कि जो तंजीमें लगातार काम करती हैं, जिनका मतलब अरसा दराज से अपना काम करती हैं, वो बात तो हमें समझ आती है शाह साहब। ये आमों का फेस्टिवल जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रश आया हुआ है, जो सलमा हाउस जो है फुल जा रहा है, लेकिन डी पैक जो एक तंजीम है गालबन पाकिस्तानी डेनिश बिजनेस अफेयर काउंसिल है, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखें मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कम या प्रोग्राम था कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कितने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं, उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पे मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराजात तो निकालते होंगे जो समझ आती है। लेकिन शाह साहब हर रोज़ मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी, हमने कभी नहीं की। और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्लेय किया कि वो 4,000-5,000 करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का। तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं, तो हर चीज। लेकिन ये आसा आसा ये आप एक याद चीज याद रखे, ये वाइकिंग है, ये बैरी करजाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैने छोटी छोटी चोरी नहीं करते। तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर, तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं, अपनी ही गलतियों की वजह से। और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है, और किन किन के ऊपर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं जाने सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगू होती है डेंशो से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से ज्यादा टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा, ये जो है वो
1: ये बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठकर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये आवाम से रब्ता नहीं रखेंगे, ये आवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आईन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे उस वक्त तक। देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है, आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बार बार करे ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर शायरी कर रहा था, तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक को पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा कह रहा। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट क्या था, उसका वो बोल कह रहा था? तो आगे जो वो मेरा मुंह देखने लगा, हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 100-400 के करीब कानून बने हुए हैं ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो आवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से है। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे कैस्कस दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी, वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या है पाकिस्तान में, सुने जजों से सुने दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जो कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले
1: शाह साहब,
0: मुसलमान
1: एक
0: थे
1: नया
0: ये
1: सवाल आ
0: साफ।
1: गया हमारी तरफ। शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब, आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी, सारी ये आपने बात सही है, पेट्रोल फेंक रहे हैं, सारी पार्टी पेट्रोल फेंक रही है, सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो हैं ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या? कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी, ये है पेड बाय यूएई, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये कॉमनवेल्थ
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग जो है अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है, कुछ भी हो सकता है आखिरी टाइम पर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की जो ताज़ा मैं आप ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और ये अकल भी कहती है और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जितनी बड़ी कंपेन की जा रही है, जितने बड़े तरीके से की जा रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, शाह साहब वोटर सपोर्टर को तो नज़र आता है, हमें सहूलियात क्यों कौन देगा? पंजाब को देखा जाए, दूसरे जब सूबे देखते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में क्यों तरक्की हो रही है, बजट तो हमें भी मिलता है, बजट तो कश्मीर की तरफ भी जाता है, बजट तो KPK में भी जाता है, बजट तो सिंध में भी जाता है, डेफिनेट तरक्की हो रही होगी जहाँ जहाँ हो रही है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि नून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर?
0: नहीं बना सकते, अगर असूली तौर पर देखें जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके मुताबिक ये जाकर आजाद कश्मीर के जो अपनी अपनी उनकी अवामी ताकत है, उनकी अपनी जो पार्टीज हैं उनके अंदर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनके आप पंजाब से उड़े या आप अपने इलाके इस्लामाबाद पिंडी से जाएं तो आप आजाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जब आपको ये अख्तियार वो आईन नहीं दे रहा तो फिर आपको ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी है। देखिए, जब इंडिया वाले जो है वो सूबा कश्मीर में अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाकई ही कश्मीरियों के हक पे दोनों मुल्क जो है ये डाका डालते हैं, इनको कोई हक नहीं कि आईन के मुताबिक ये जाकर और ऐसी बातें करें और ये कह रही कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, ये इनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि इनको आजाद छोड़ देना चाहिए। आजाद कश्मीर के लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी बनाए और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो
1: शाह साहब
0: पाकिस्तान
1: पार्टियां
0: में
1: तो उनकी अपनी बनी हुई है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर कानून है, उनके अपने सदर है, पार्टियां तो बनी हुई हैं। तो शाह
0: नहीं,
1: साहब
0: वो बात
1: आपका
0: सही
1: बहुत
0: है।
1: शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।